ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य

0: तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

किसी भी प्राणी की निष्काम भक्ति परमात्मा को अपने वश में कर लेती है और प्रभु भी भक्तों के अधीन हो जाते हैं।

श्री राम पुरुषोत्तम भगवान का एक ऐसा नाम जिसको लेने से समस्त जड़, चेतन, पाषाण और समस्त जीव तर जाते हैं।

गज को ग्रह के फंद से मिटाने वाले नारायण, जटायु जैसे आमिष जीव को भी अपने पिता के समान आदर देने वाले श्री राम, गोपियों के प्रेम से मोल बिकाने वाले गिरधारी कृष्ण, तुम्हारे अनंत लीलाओं और अनंत रूपों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।

आज के कार्यक्रम वंदना में आपने भक्ति रचनाएं सुनी। स्वर था नरेंद्र चंचल, बीना राजेंद्र मेहता, अनूप जलोटा, हीराबाई बाड़ोतकर और ये देशभक्ति परक रचना आपने सुनी संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे बौद्ध धर्म में पंचशीलों का महत्व, इस विषय पर ये विचार। आलेख भिक्षु ज्ञान रत्न का है और वाचन है सरोज शर्मा का। आइए सुने कार्यक्रम प्रकाश किरण।

0: परंपरा को ही नहीं अपितु समस्त संसार के अंधकार का, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से नाश किया, ऐसे त्रिलोक गुरु तथागत भगवान बुद्ध ने मानव मुक्त के लिए सबसे पहले पंचशील का उपदेश दिया। वही शील बौद्धों के नित्यशील कहलाते हैं।
1: पानाति पाता वेरमनी सिक्खा पदं समादियामि।
0: मैं प्राणी हिंसा करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
1: अदिन्नादाना वेरमनी सिक्खा पदं समादियामि।
0: मैं जो चीज प्राप्त नहीं हुई है उसको लेने से अर्थात चोरी करने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
1: कामे सुमिच्छाचारा वेरमनी सिक्खा पदं समादियामि।
0: मैं काम वासना आदि मिथ्याचारों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
1: मुसावादा वेरमनी सिक्खा पदं समादियामि।
0: मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ।
1: सुरा मेरय मज्जप मादठाना वेरमनी सिक्खा पदं समादियामि।
0: मैं कच्ची पक्की शराब और किसी भी प्रकार की नशीली चीजें ग्रहण करने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इन पांच शीलों को तथागत ने थोड़े में ही समझाया है।
1: यो पान मति पाते ते मुसावादं प्रभासते लोके अदिन्नं आदियते परदारं च गच्छति सुरा मेरय पानं च यो नरो अनुयुञ्जति इधेव मेसो लोकस्मिन् मूलं खनति अत्तनो।
0: जो हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पराई स्त्री के पास जाता है।

0: है और जो मद्यपान करता है वह आदमी यही इसी लोक में अपनी जड़ें खोदता है। भगवान बुद्ध अपने संदेश में कहते हैं,
1: सब पापस अकरणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं ते। घातो पापि मोक्षे च संवरो मत्संयुता च भक्तस्मिन् पन्तं च सहनाशयं।
0: किसी से निंदा न करना, किसी का घात न करना, सूक्ष्म नियमों का पालन करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना बैठना, चित्त को योग अभ्यास में लगाना, यही है बुद्धि की शिक्षा।

0: प्रकार सुनार चांदी से नल को दूर करता है, उसी प्रकार मेरे ही पुरुष प्रशिक्षण थोड़ा थोड़ा करके अपने दोषों से दूर करें।
1: न अत हेतु न परस हेतु न पुत्रमित्ते न धनं न रक्षं न इच्छेय अधम्मेन समिद्धिमत्तनो प्रशील वा पण्यवा धम्मिकोऽस्याति।
0: अगर उसे न अपने लिए पुत्र धन या राष्ट्र की इच्छा करे न दूसरे के लिए, जो अगर उसे अपनी उन्नति नहीं चाहता वही सदाचारी है, प्रज्ञावान है और धार्मिक है।
1: साधु साधु साधु।
2: बौद्ध धर्म में पंचशीलों का महत्व, इस विषय पर आधारित था हमारा आज का कार्यक्रम प्रकाश किरण। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज के संगीतबद्ध प्रसंग को स्वर प्रदान कर रहे हैं शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज के दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सांध्यकालीन सभा में रात्रि 10 बजे से आपको सुनवाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत, बुंदेलखंडी लोकगीत और इन्हीं लोकगीतों से सजा हुआ होगा आज का कार्यक्रम सबरस, जिसे आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी प्रातः के 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय होगा बाग लगाते समय सावधानियां। जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। संस्कृत में समाचार आप सुन सकेंगे प्रातः 6:55 पर और प्रातः 7 बजे का समय होगा पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित हमारे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का। प्रातः 7:31 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे अपने ही फरमाइशी लोकगीतों को, कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी के अंतर्गत। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी ब्रज में ठाकुर जी की ग्रीष्मकालीन सेवा। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर और प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे चंद गजलें, कलाकार होंगे मोइनुद्दीन। प्रातः 9:15 का समय होगा सामयिक चर्चा का और प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबोहवा, बढ़ती आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण, ये होगा आज के कार्यक्रम का विषय। आलेख और वाचन श्रीमती मोनिका विजय का होगा।

का। प्रातः 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बाल गोपाल, जिसमें आज आप सुन सकेंगे वार्ता मायोमिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष कारण और निदान। डॉक्टर सोविता रथ से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। और इसी कार्यक्रम में आप सुनते हैं बच्चों के मुख से कुछ कविताएं, कहानियां और चुटकुले भी। प्रातः 10 का समय होगा कार्यक्रम काव्य गोष्ठी का। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित होगी काव्य गोष्ठी, जिसमें प्रतिभागी होंगे अनुपम गौतम, रेणु उपाध्याय, चंद्र प्रकाश शर्मा, और इस काव्य गोष्ठी का संचालन करेंगे जितेंद्र सिंह। समय याद रखिए प्रातः 10 से। फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी दिन में 11 आपको सुनवाएंगे। और कार्यक्रम ब्रज लोकगीत में दोपहर 12:30 पर आज आप सुनेंगे ऋषि शर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत। दोपहर 1:15 पर आप सुन सकेंगे हेमेंद्र दीक्षित की लिखी हुई झलकी हार जी, प्रस्तुति होगी यतीन्द्र चतुर्वेदी की। दिन में 1:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। इस कार्यक्रम में आपके साथ होंगे ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित। दिन में 1:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और 2:15 पर हिंदी समाचार होंगे। दिन में 2 होंगे अंग्रेजी में समाचार। और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 2:30 पर। 3 हमारी पहली सभा का समापन होगा। हमारी दूसरी सभा प्रारंभ होगी संध्या 5:30 से कार्यक्रम युवाणी के साथ, जिसमें आज की बात का विषय होगा राष्ट्रमंडल दिवस और उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म संगीत और करंट अफेयर्स भी।

0: संध्या 6:15 पर सुनिएगा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, जिसमें आज चर्चा होगी कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। कार्यक्रम मनभावन के अंतर्गत आप सुनेंगे अपने ही पसंदीदा ब्रज लोकगीतों को। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय संध्या 6:45 का होगा और संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे उद्धव शतकसों पाठ। शाम सुहानी कार्यक्रम लेकर आएंगे संध्या 7:31 पर और रात्रि 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम सुहाने तराने आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर और हमारी सांध्यकालीन सभा रात्रि 11:10 पर समाप्त होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, बाग लगाते समय सावधानियां। इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, फल वृक्ष दीर्घकालीन होने के कारण बाग लगाने के पूर्व योजना बनानी जरूरी है। अच्छा तो यह रहता है कि बाग लगाने से पहले कागज पर ही लेआउट यानी कि रेखांकन कर लेना चाहिए। बाग की योजना बनाते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे आप स्थानीय मिट्टी को ही ले लें, आम और लीची के लिए गहरी दोमट मिट्टी की जरूरत होती है तो पपीता के लिए हल्की मिट्टी की, जबकि अमरूद सभी प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन अच्छे परिणाम के लिए गहरी दोमट मिट्टी उसके लिए भी उपयुक्त पाई गई है। आम अमरूद पपीता के लिए क्षारीय भूमि का चयन भूल करके भी न करें। मुख्य रूप से अपने इस क्षेत्र में लीची तो नहीं होती है, लेकिन लीची के लिए जो हल्की अम्लीय मिट्टी अच्छी पाई गई है, तो क्योंकि अम्लीय मिट्टी में लीची की जड़ों पर छोटी छोटी गांठें बनती हैं जो कि माइकोराइजल कवक से भरी रहती हैं। ये कवक वातावरण में नाइट्रोजन को एकत्रित करता है और साथ ही लीची वाले बाग में चूने की कमी भी नहीं होने देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो हम लीची को छोड़ करके आम अमरूद और पपीते की बात करेंगे जो कि अपने इस क्षेत्र में आसानी से उगाए जा सकते हैं। अप्रैल मई के महीने में ही रेखांकन के आधार पर गड्ढा

0: खोद लिया जाता है। आम के लिए 1 घन मीटर आकार का गड्ढा खोद लेते हैं, जबकि अमरूद के लिए 60 घन सेंटीमीटर आकार का गड्ढा पर्याप्त रहता है। गड्ढा खोदने से निकली ऊपरी मिट्टी को अलग संभाल करके रखते हैं, 20 से 25 दिन तक इस मिट्टी को धूप लगने देते हैं, जिससे कि मिट्टी में उपस्थित हानिकारक जीवांश नष्ट हो जाएं। जून के महीने में गड्ढों को भरा जाता है। आम में जब गड्ढा खोदते हैं तो आपसी दूरी 10 मीटर रखते हैं। यदि आप आम्रपाली किस्म लगाने जा रहे हैं तो आपसी दूरी 2.5 मीटर ही रखी जाती है। और अमरूद के लिए 6 से 7 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदे जाते हैं। और पपीता में कतार के अंदर पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर तथा कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर तक रखी जाती है। जून के महीने में आम के गड्ढों को भरने के लिए 12 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 750 ग्राम हड्डी का चूरा और 500 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, अगर संभव हो सके तो 500 ग्राम प्रति गड्ढा नीम की खली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरूद के गड्ढे भरने के लिए 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 500 ग्राम हड्डी का चूरा और 500 ग्राम पोटास से गड्ढे को भरा जाता है। और पपीता के गड्ढे भरने के लिए 20 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 200 ग्राम सुपर फास्फेट और 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट को मिट्टी के साथ मिलाकर के भरते हैं। गड्ढे को जमीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचा भरें। गड्ढा भरने के कुछ दिनों बाद यदि वर्षा हो जाती है तो ठीक है, वरना पानी लगा देते हैं, जिससे गड्ढे की मिट्टी अच्छी प्रकार से बैठ जाए। कलमी पौधा गड्ढों में लगाने के लिए किसी विश्वसनीय नर्सरी से प्राप्त करना चाहिए। पौधे औसत ऊंचाई के हों और नर्सरी में कलम या शाटर लगाने के बाद कम से कम 8 से 10 महीने तक रखे गए हों।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। बाग लगाते समय सावधानियां, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः 4-दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरंतर प्रगतेः विषये प्रधानमंत्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शांति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शांतिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणाम एकेन प्रतिनिधिमंडलेन सह कनाडा देशस्य 3-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयल व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगुना अवदत् यत्

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7 बजे हैं।

दस्तक। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को हम ले रहे हैं फिल्म दो बूंद पानी से।

शब्द रचना जयदेव की, शब्द रचना है कैफी आजमी की और संगीत है जयदेव का। ये आवाज है परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना दीदार फिल्म का ये गीत। शब्द रचना शकील बदायूनी की थी और संगीत था नौशाद का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

शब्द रचना साहिर की है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत को हमने लिया है फिल्म दास्तान से। आवाज आशा भोसले की।

आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना दास्तान फिल्म का ये गीत, शब्द रचना साहिर की थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 25 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भधान की समस्या और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के सभी श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी, पेल्विक दर्द, यूरिनरी समस्याएं, पीसीओएस, पीसीओडी, बांझपन आदि समस्या के समाधान के लिए सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं ध्यान रहे।

कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 25 मई 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में, क्षमा कीजिए, प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक, नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और आगरा सहित देश के 47 अलग अलग स्थानों पर कल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है।

0: मंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
1: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ ये माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
2: मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान में 20 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना की चर्चा करते हुए इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके चलते लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बांदा प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
4: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग योजना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं।
0: उधर अयोध्या में कल तेज आंधी के साथ हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP MLA सेशन कोर्ट ने कल सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार रखी गई है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया गया है। महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य नीरज रावत की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा निवर्तमान प्रदेश सचिव ब्रजराज सिंह और 30 अज्ञात समर्थक भी शामिल हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल फिर वृद्धि की गई। पिछले 10 दिन में तेल के

मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमतों में करीब 86 पैसे और डीजल में करीब 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम कल घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। आईपीएल मुकाबले में कल लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच खेला गया। इस मैच को पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के बल पर 7 विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की

0: विकेट से जीत लिया। पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ की टीम को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए और पंजाब को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उसने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। इस हार के साथ आईपीएल के इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर समाप्त हो गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में लिया हिस्सा। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाने के लिए भारत विश्व के कई देशों के साथ कर रहा साझेदारी। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

काम करे हैं, अपने क्रियाकलापंतों ठाकुर जी की प्रसन्नता चाहे हैं। तो जब ठाकुर जी प्रसन्न है जाएंगे तो हम जाने हैं समझे हैं कि हम सब भी स्वतः ही प्रसन्न है जाएंगे। तो अपनी सेवा ना करके जा समय हम सेवा में लगे भए हैं अपने ठाकुर द्वारन की, ठाकुर जी की। और हमारे यहाँ तो विशेष करके गर्मी और शीत और हर मौसम के अनुसार उनकी सेवा हुई है, ये तो प्रकार है हमारे यहाँ। और विशेषकर जब गर्मी इतनी पड़ रही है तो जा समय ठाकुर जी के भवन में विशेष करके सुंदर सुगंधी इत्र की, गुलाब खस की सेवन करवाए जा रहे हैं। शीतल पेय पदार्थ चले हैं जा समय कोई गरिष्ठ भोजन प्रसाद के ताई ना लगे हैं। हाँ, राजभोग जरूर लगे हैं, वह में कच्चो भी होए पक्को भी होए, लेकिन विशेष करके ऐसे द्रव्यन को पदार्थन को पधरावो जाए है जहाँ से शीतलता प्राप्त हुए। जैसे शरबतन में जा समय बात कर लो तो फाल सा खूब आ रहे हैं, बेल को मौसम चल रहे है, और खीरा ककड़ी तरबूजा खरबूजा जो सबरे फल है ना, जिन सबको खाए के शीतलता मिले है, तो ठाकुर जी को ऐसे पदार्थन को भोग लगाए जा रहे हैं जहाँ से शीतलता आए। ऐसी सुगंधि अर्पित की जा रही है, ऐसी सुगंधि ते उनके शरीर की मालिश की जा रही है जिनते उनको शीतलता प्राप्त हुए। और तो और उनके भवन को ऐसी कहना कि गार्टर पार्टी से पार्ट दियो हमारे घर को, पर्दा लगा दे, उन्हें कूलर लगा दे, उन्हें एसी लगा दे। तो भैया ठाकुर जी तो बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं, जाने हैं कि पता नहीं हमारे भक्त पे कछु है कि ना है, थोड़ी सी सेवा से रीझ जाएं। तो जिनके पास सब कुछ है वो तो भैया अपने स्तर को इंतजाम करें, और जिन पे कछु ना आया है वो अपनी कहें कि जो शीतल पाटी हुए है, खस की दीवार हो जाए है, चटाई जहाँ पे खस के लगाए दिए जाए हैं घास फूस, और वाय जल धार करके शीतल कर दी जाए, ठाकुर जी के दरवाजे पे खिड़की पे लगा दी जाए ताकि गर्म हवा प्रवेश ना कर सके, और जो हवा प्रवेश भी करे तो शीतल है करके अंदर जाए, तो वो गर्म बयार भी शीतल सुगंध पावन हवा मंद हवा बन जाए। और तो और बस जब ऐसी सेवा के बाद ठाकुर जी की नेक मधुर मुस्कान देखने को मिल जाए तो लगे कि अब हमारी सेवा भाव सब पूर्ण है, चलो है। तो आनंद के ही यहाँ तो भंडार हैं ब्रजमंडल में, जय के काजे तो सबरे यहाँ उमड़ के आवे हैं, और देखवे चाहो हैं कि कौन करे सेवा, कैसी करे सेवा, कैसी सेवा से यहाँ ठाकुर प्रसन्न हुए। तो भैया सेवा सामग्री से नाए हुए है, सामग्री तो कभी कम पड़े कभी ज़्यादा हो जाए है, सामग्री से तो सभी उबें, ठाकुर जी भी उब जाएं, लेकिन जो मन है ना वह भाव को देख करके हमारे जो राजाधिराज है ना, वो जो भक्त हैं उनकी कहें कि मोल बिका जाए, उनके अधीन हो जाए हैं। तो ऐसी तो हमारे ब्रज में ग्रीष्मकालीन सेवा चल रही है, जाके दर्शन के ताई दूर दूर से आ रहे हैं लोग, ऐसी सुगंधित पुष्प को बंगला हुए है, जैसे दूर से कोई मंदिर में प्रवेश करे ना तो लगे कि यह क्या बात है, क्या विशेषता है आज की। और जब मंदिर में प्रवेश करके देखना चाहे, दर्शन करना चाहे, तब लगे कि यहाँ तो हमारे ठाकुर दिन रात उपवन और मनोरथी में लगे पड़े हैं, आनंद दे रहे हैं सब भक्तन को, आनंद कर रहे हैं, आनंद बरसाए रहे हैं। तो अब अपने कार्यक्रम में हमों आगे आनंद बरसावे के प्रयास करें, लेकिन भैया ने खेद प्रकट करें आपको जय बात को कि आज हमारा जो व्हाट्सएप संदेश को माध्यम है, हमारो जो कनेक्शन है वो तकनीकी कारण से आज सही ना आए हैं, हम आपके व्हाट्सएप संदेशों को तो ना पढ़ सकें, लेकिन पाती जो हमें मिली भई हैं उनसे आपकी पसंद लेवेंगे और उन्हीं से आपके नाम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम में पाती लेवे हैं आपकी, ग्राम नौगांव ते सीताराम रेखा, इनके संग हैं रोशनी और इनके पापा मम्मी। ये हैं सम्राट चौक शिरपुर जैन से गिरीश देशमुख, सोनाली देशमुख, जयश्री जोशी, माधुरी जोशी, सोनाली पाठक, जीवाय देशमुख और इनके सगरे संगी साथी। मलोट कैंप पंजाब के हमारे श्रोता सतीश मिंगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिंगलानी को जे पत्र हमें मिलो तो आप सबकी फरमाइश पूरी करें हैं, और उम्मीद करें हैं कि जो श्रोता हमें सुनवे को जुड़े हैं हम संग, वो भी निराश ना होंगे, वो भी आनंद लेंगे आज इन लोकगीतन को। तो सुनवावे हैं आपको ओम प्रकाश डागोर के स्वर में गायब है जा लोकगीत को।

ब्रजमाधुरी सुन बारे हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज रविवार को दिना और आपके समक्ष लेके आए आए गए हैं, हाजिर रह है गए हैं कार्यक्रम ब्रजमाधुरी को। भैया, जो समय कितनी गर्मी पड़ रही है जी, हम सब जाने हैं। गर्मी पड़े तो कहे हैं हाय गर्मी है रही है। शीत पड़े तो हम मकला जाए हैं कि कब आएगी गर्मी, कब शीत समाप्त होंगे। और जे मौसम को खेल ऐसे ही अनवरत साल भर वर्ष पर्यंत चलते रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हमारे ब्रजमंडल में सगरी शीत सगरी घाम जो है ना, वो ठाकुर जी के समर्पण कर दी जाए है। मतलब जे कि अपनों सुख दुख नाय देखो जाए है। हम सब ब्रजवासी तो बस ठाकुर जी के सुख के काजे

0: ओ राधा कह दे साची साची अपने मन की बात। तो सही है, सबरी बात साची साची कहना चाहिए। और भक्ति में भी जी प्रयास की साची साची कह दे अपने मन की। अभी आपने सुनो जा लोकगीत को, और पहले सुने हैं जिस संदेश, बाकी बात पुनः अपने कार्यक्रम में जुड़ेंगे आपके संग।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें, तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिए, ठंडे पानी से नहाए, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबरा हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छाव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

एक बार फिर से आप सभी को स्वागत आपके अपने कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में। और अब ले हुए आपके अगले जे पत्रन को, और जे पत्र है हमारे पास आए हुए जे पत्र है मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र को जे पाती है, और जे लिखवे बारे हमारे श्रोता अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, और बहादुरा नागपुर ते आकार हाइट्स ते जापाती को भेजे हुए श्रीमती वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी ने बदलापुर मुंबई ते सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर और लाड़लाड टुकटुक गवाणकर, इनके संग संग जे पाती है महादेव घाट अमलेश्वर ते डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर को, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी के हमारे श्रोता जापाती को भेज रहे हैं, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। तो आप सभी के संदेश पे, आप सभी के फरमाइश पे सुनवावे हैं जालो गीत को जयस्वर दीनों है माधुरी शर्मा ने।

छोटी सी अंगनैया हवा ना आवे। अभी आपने जा लोकगीत को सुनो माधुरी शर्मा के स्वर में। और जे अगली पाती लेवे हैं, जे पाती है लच्छनपुर ते रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू को। और जे हैं प्रभाकर जोंधले आरती जोंधले जिला नांदेड़ गौतम नगर ते। और इनके संग जुड़े भए हैं हमारे जे श्रोता दत्तरेंगी ते भागवत वर्मा और इनके पूरे परिवारी जन। जे पाती भेजी सासनी हाथरस ते मनमोहन सिंह और ऋषभ उपाध्याय रिया रिचा बेबी पिंकी और इनके परिवारी जन। इनके संग ही संग हैं ग्राम गोपी की नगरियां ते मिठ्ठालाल सारस्वत नेहा नीरज निकिता और इनके पापा मम्मी। ग्राम नगला पोला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह अनुराधा रामानुज राधिका पवन करण भोला नमन और इनके समस्त परिवारी जन। तो आप सबको सुनवावे हैं गीता अग्रवाल और सखिन की गाय भेजा लोकगीत को।

राधा के भरोसे मत रहियो। अब भाई आपने सुनो जालो गीत कहूँ गीता अग्रवाल और सखियन के स्वर में। और अब आखिरी लोकगीत आपको सुनवाए दें, आपकी पाती को पढ़ें। जे पाती है ग्राम कुमुदवन ते रमेश चंद्र सैनी, सुनील रचना गब्बर और इनके परिवारी जनन की, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर ते अजीत सोनिया शिवांश चुन्ना और इनके पापा मम्मी, ग्राम नौधरा से जुड़े भए हमारे जे श्रोता हते कोमल मास्टर जोशोदा सूरज रोहित चंचल संजना शिवानी और इनके पापा मम्मी। तो अब आपको सुनवावें जे लोकगीत वीरेंद्र सिंह के स्वर में।

0: वीरेंद्र सिंह के गायब है जाए लोकगीत के संग आज के कार्यक्रम को अब यहीं पे देवे हैं विराम। स्वीकार करो हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
4: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

0: नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद

0: ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
0: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्य में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्य ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक

0: से। जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. US President Donald Trump says Iran deal including reopening of Strait of Hormuz largely negotiated. IMD forecasts severe heat wave conditions in some parts of northern, central and eastern India, including Delhi today. And in athletics, Gurinderveer Singh wins men's 100-meter gold with new national record at Federation Cup in Ranchi. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will hold bilateral talks with US Secretary of State Marco Rubio at Hyderabad House in New Delhi today. They will discuss a wide range of issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio arrived in India yesterday on a 4-day visit to participate in the Quad Foreign Ministers meeting.
3: The Quad Foreign Ministers meet will be held on the 26th of this month. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Australian Foreign Minister Penny Wong, Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meet. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, they will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on the recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. With Suparna Sakya, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: Secretary Rubio called on Prime Minister Narendra Modi yesterday and briefed him on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. He shared US perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. Prime Minister Modi asserted that India and the United States will continue to work closely for the global good. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio called India a vital partner to the United States. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Executive Vice President, Global Public Policy and Corporate Strategy at Boeing Company, Jeff Shockey, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said that during the meeting, both sides discussed measures on advancing India-US cooperation in aviation and aerospace manufacturing. He added that the meeting also followed discussions focused on developing maintenance, repair and overhaul opportunities, skilling, supply chains, innovation.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में आपने सुना लम्हे फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था शिव हरी का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में, फिल्म अंदाज से। शब्द रचना समीर की है, संगीत है नदीम श्रवण का।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुना फिल्म पैडमैन का ये गीत। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हैलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार अर्थात 25 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारा टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भधान की समस्या कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के सभी श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी, पेल्विक दर्द, यूरिनरी समस्याएं, यूटीआई, पीसीओएस, पीसीओडी, बांझपन आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर

प्रसुरांगना अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 25 मई 2026 और समय अपराह्न 1:15 का। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

पेशा कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म मौसम से। गीत को आवाज दे रहे हैं शाहिद मलाया, शब्द रचना इरशाद कामिल की है, संगीत है प्रीतम का।

0: सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में आपने सुना ये गीत जिसे हमने लिया था फिल्म रहना है तेरे दिल में। और शब्द रचना समीर की थी, संगीत था हैरिस जयराज का। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ जी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
0: प्रातः के 9 बजे हैं, आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। आज के कलाकार हैं मोजुद्दीन। आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये गजल।

मोजुद्दीन की गाई हुई इसी गज़ल के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
2: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
3: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायवी तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इंसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
2: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी CHC और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के CMO अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
4: हमारे जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम है, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब है और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
2: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
5: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की ही संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने

0: घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकले, और जब भी खुले में निकले या कहीं भी जाए तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
1: भीषण गर्मी के कारण इस बार प्रदेश में बिजली की मांग ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो इसे लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्नाव में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विभाग ने सरैया, शुक्लागंज और गंगाघाट टाउन सब स्टेशनों पर लगे हुए बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए जंबो कूलर लगाए हैं। यहाँ SDO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि लोड मैनेजमेंट और लो वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पुराने ट्रांसफार्मरों को हटाकर उच्च क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
2: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी CHC जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके उसमें।
1: गर्मी का असर केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है बल्कि पशु पक्षी भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तेज धूप और जल स्रोतों के सूखने से पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, दूध देने वाले पशुओं के उत्पादन में भी कमी आ सकती है। इन स्थितियों को देखते हुए प्रदेश के चिड़ियाघरों, लॉयन सफारी में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में फॉगर शॉवर से तापमान कम किया जा रहा है। भालू लेपर्ड हाउस में कूलर लगाए गए हैं तो हिरणों के तालाब ट्यूबवेल से भरे जा रहे हैं। गर्मी के कारण सफारी का समय भी बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है।
3: गर्मी और लू से बचाने के लिए जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं तो अंदर ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। साथ ही धूप से बचाने के लिए सफारी क्षेत्र में प्लस जहां पे भी संभव होता है वहां पे छप्पर लगाए जाते हैं फूस के ताकि उनको बचाया जा सके। डियर एंटीलोप सफारी में है उनको पर्याप्त तालाब जो भी बने हुए हैं सफारी क्षेत्र के अंदर उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी रहे सुनिश्चित किया जाता है। तैयारियां की गई हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि वन्य जीवों को गर्मी और लू से बचाया जाए।
1: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
4: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थ यात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहाँ पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है। वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की

0: अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभू शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
1: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
0: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
3: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, बढ़ती आवश्यकताएं और बिगड़ता पर्यावरण। इस विषय पर आधारित है हमारा आज का कार्यक्रम। आलेख और वाचन श्रीमती मोनिका विजय का है।
4: पर्यावरण बोझ से अर्थ पर्यावरण के समूचे बोझ से है, जिसमें कुछ ज्ञान पूरा और कुछ ज्ञान अधूरा होता है। पर्यावरणविद आर डाउन का मानना है कि पर्यावरण बोध भौगोलिक इकाई की विषय वस्तु है और इसका अध्ययन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, रचनात्मक पर्यावरण बोध, दूसरा मूल्यांकन पर्यावरण बोध और तीसरा अपेक्षित पर्यावरण बोध। प्रथम रचनात्मक पर्यावरण बोध के तहत किसी स्थान की पर्यावरणीय स्थिति का मानव मन पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव पर जाता है। मानव संस्कृति की विविधता इसी कारण से देखने को मिलती है। दूसरा, मूल्यांकन पर्यावरण बोध में पर्यावरण के तत्वों का मूल्यांकन स्थान, काल और अंतर संबंध के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। अपेक्षित पर्यावरण बोध के संबंध में जो ज्ञान उपलब्ध है उसमें रचनात्मक तथा मूल्यांकन दोनों का आधार बनाया जाता है। अर्थात पर्यावरण के संबंध में जो ज्ञान उपलब्ध है उसके क्रम में ज्ञान का संग्रह किया जाता है, तब निर्णय लिया जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक प्रकोप का जो पुराना अनुभव एक क्षेत्र के निवासियों को उसके आधार पर इनके घटने बढ़ने की संभावना का पता लगाता है, फिर उसके आधार पर निश्चित करते हैं कि किन उपायों से उसने छुटकारा पाया जा सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। हम जानते हैं कि समुद्री तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, दावाग्नि, महामारियां आदि प्रकृति की देन है। इसके सृजन पर रोक लगाना मनुष्य के बूते के बाहर है, फिर भी मनुष्य अपनी खोजों और प्रयोगों के द्वारा ये जानने का प्रयास करता है कि समुद्री तूफान की गतिशीलता और व्यापकता का क्या स्वभाव है। इसके लिए राडार या उपग्रह से चित्र लेकर सावधानी की सूचना अग्रिम रूप से देकर धन जन की बचत करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि जापान में लकड़ी के घर अधिक बनाए जाने लगे हैं ताकि भूकंप से जान माल की हानि कम हो। ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप अब जापान में कंक्रीट के बहुमंजिली मकान बनाए जाने लगे हैं, लेकिन भूकंप से सुरक्षा उसकी रचना का प्रमुख आधार है। विश्व के अनेक देशों में प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव समान नहीं है, फलतः इनको झेलने का बोध भी समान नहीं है। कम विकसित देश इसे सहज भाव से झेलते हैं, जबकि विकसित देश इससे आक्रांत होते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसे प्रकोपों पर पूर्ण नियंत्रण किया जाए, अर्थात प्रकृति को वश में किया जाए। स्पष्ट है कि पर्यावरण बोध प्रत्येक क्षेत्र में

प्रत्येक समाज में समान नहीं होता है। पर्यावरण बहुत कठिन साध्य है, लेकिन ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका विश्वव्यापी प्रभाव है। उदाहरण के लिए, जलवायु किसी देश की सीमा में बंधी नहीं होती है। इसी प्रकार जलवायु में दूषित गैसों का प्रभाव भी सब तरफ विश्वव्यापी रूप से फैल रहा है। आज विश्व के सभी राष्ट्र एकमत हैं कि संसाधनों

आवश्यक है कि भविष्य के लिए हमें वर्तमान की पूर्ति को अवश्य कम करना होगा, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों न केवल धातुओं, वस्तुओं तथा पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के लिए तरसेगी, अपितु हमारा पर्यावरण भी इतना प्रदूषित हो चुका होगा कि शायद जीवन ही कठिन हो जाए।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश कर रही हैं निधि मित्तल।

0: जय हिंद। बच्चों आजकल गर्मी तो बहुत पड़ रही है, लगती है ना आपको गर्मी है ना। गर्मी के तो क्या कहने, सुबह से ही धूप हो जाती है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है ना बच्चों। और इतनी तेज तपन शुरू हो जाती है बच्चों, नुकसान करता है गर्मी में बाहर निकलना। अब आप बाहर मत खेलना धूप में है ना। और गर्म मौसम की तेज लपटों में कई लोग तो लू की चपेट में आ जाते हैं और लू लग जाती है। तो इसलिए बच्चों हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि हम खुले शरीर धूप में ना निकलें, खासकर खुले सिर व नंगे पैर। और धूप में तो बिल्कुल ना जाएं, सिर पर कुछ ढक कर जाएं, तौलिया ढक लें या छाता लेके निकलें। और धूप में बाहर निकलना ही पड़े तो बच्चों सिर अवश्य ढकें और आंखों पर सनग्लासेस लगाएं। और बच्चों आप रेशमी वस्त्र तो नहीं पहनते ना गर्मी में? गर्मी में कॉटन के ही वस्त्र पहनना, गहरे रंग के मत पहनना बच्चों, हल्के रंग के पहनना। गर्मी में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अचानक जैसे आप ठंडी जगह में बैठे हो तो एकदम से गर्म जगह पर मत जाना। जैसे आप मान लो एसी में बैठे हो, खूब कूल कूल हो रहे हो, ठंडे ठंडे हो रहे हो, तो आप एकदम से धूप में मत निकलना। और बच्चों देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि प्याज खाने ना खाने से कोई मतलब नहीं है ना। कहते हैं ना कि एक छोटी सी प्याज जैसे जेब में रख लो तो लू नहीं लगती है ना, सारी गर्मी वो खुद सोख लेता है। और बच्चों आप चाय तो नहीं पीते ना? छोटे छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, गर्म चीज मत खाना, बस चॉकलेट खाते हो है ना। तो थोड़ी सी खाना चॉकलेट, ज्यादा मत खाना। और बच्चों ज्यादा ठंडा पानी भी मत पीना। गर्मी के दिनों में हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करना और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है ना, थोड़ा थोड़ा पानी, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो। बच्चों आपको ठंडाई तो अच्छी लगती होगी ना, ठंडाई तो सब बच्चों को अच्छी लगती है, ठंडाई भी पीना। और जो इस गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं ना, उनका सेवन करना। और कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो फल खाने के बाद में पानी नहीं पीते, जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, इनके ऊपर पानी नहीं पीते। तो ये तो बच्चों आप गर्मी में बहुत ध्यान रखना है ना अपने शरीर का। और बच्चों आज हम आपको एक ऐसी जानकारी सुनवाते हैं जो कि खास तौर पर बच्चों को परेशान करती है, और ये है मायोपिया। मायोपिया क्या है, क्यों होता है ये, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर सोबिता रथ, जो कि वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं डॉक्टर श्रॉफ आई केयर इंस्टीट्यूट वृंदावन में। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओ, आंखें वो अंग हैं जो दुनिया को देखती हैं। दुनिया को देखने के बाद हम समझते हैं, जानते हैं, यानी दुनिया की रंगीनियों को देखने के लिए आंखों का बहुत महत्व है। ये आंखें ठीक हों, स्वस्थ हों, सही से काम कर पाएं, तो दुनिया के मायने हमारे लिए अलग हो जाते हैं। बच्चों में मायोपिया एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये मायोपिया क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है,

0: और अगर हो जाता है तो उसके क्या समाधान हो सकते हैं। इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोविता रथ जी, आप वरिष्ठ आई सर्जन हैं डॉक्टर श्राफ आई केयर इंस्टीट्यूट दिल्ली में। मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, तो जो मायोपिया जैसी समस्या है, थोड़ा सा बताएं सबसे पहले तो ये मायोपिया होता क्या है और बच्चों के लिए इसके क्या मायने हैं।
1: तो मायोपिया का मतलब ये है, आपको पास चीजें साफ दिखती हैं लेकिन दूर की जो चीजें हैं वो आपको कम दिखता है, धुंधला दिखता है। यानी बच्चा जैसे ब्लैक बोर्ड देखने में दिक्कत होगा, आप ड्राइविंग कर रहे हैं सड़क पे कोई बोर्ड है उसमें दिखने में दिक्कत हो सकता है। तो नजदीक का क्लियर है पर दूर का आपको धुंधला दिखता है, शॉर्ट
0: जी
1: साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें माइनस का नंबर आता है और हम लोग माइनस नंबर चश्मा, जो जनरली हम बोलते हैं चश्मा आ गया स्कूल के बच्चों में या किसी को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये माइनस नंबर का चश्मा को कॉमन लैंग्वेज में मीन करता है कि मायोपिया।
0: जी, तो मतलब यह है कि जब बच्चा घर में रहता है, छोटा होता है, तब तक ये चीज उतनी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, लेकिन जब बच्चा ऑब्जर्व करता है, देखता है, दूर की चीज को समझ में नहीं आती है, तब वो कहीं जाके बताता है तो पता लगता है कि ये मायोपिया हो सकता है, यानी दूर की चीज उसको दिखाई नहीं दे रही।
1: जनरली आप जो बोल रहे हो वो सही है, पर इवन छोटे बच्चों में भी अगर बहुत पास लेके जा रहा है और उस पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वो उसको दिक्कत होती है देखने में, तो भी माइनस नंबर तभी आ जाता है और तभी एक स्क्रीनिंग या पीडियाट्रिक ऑप्टोमोलॉजिस्ट जैसे बच्चों के आंखों के स्पेशलिस्ट को दिखा देना चाहिए। थोड़ा
0: जी,
1: सा बड़े होने से क्या होता है, हमारा विजुअल फील्ड यानी जो हमारा काम करने का स्पेयर है वो बढ़ जाता है। बच्चा स्कूल जाने लगता है, बुक पढ़ाई करता है, ब्लैक बोर्ड में होता है, तो बहुत बार ये स्कूल में टीचर्स पकड़ने के बाद फिर बच्चे आते हैं या पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए, चेकअप के लिए।
0: जी, इसीलिए शायद स्कूलों में एक ड्राइव चलाया जाता है कि बच्चों की आंखों की जांच होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या उनके घर में उतने पेरेंट्स सजग नहीं है कि उनकी बात को समझ पाए, तो ये ड्राइव चलता रहता है। अब इसके पीछे के अगर कारण में जानना चाहूँ कि मायोपिया होता क्यों है, तो थोड़ा सा बताइए कि इसके कारण क्या है मायोपिया होने के।
1: तो बेसिकली मायोपिया एक बनावटी डिफेक्ट है, जैसे आंख का साइज बड़ा होता है इन बच्चों में, जो इनका आंख का करेक्ट साइज होना चाहिए, उम्र के बराबर साइज होना चाहिए, उसके हिसाब से आंख का साइज बड़ा होता है। और क्योंकि ये साइज बड़ा होता है, जो परछाई बनना चाहिए और रेटिना में पड़ना चाहिए वो नहीं होता है, तो इसमें इमेज बनने में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चे को क्लियर नहीं दिखता है। अब उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम माइनस चश्मा से दिया जाता है, एनाटॉमिकल कॉज है
0: जी
1: जैसे।
0: जी मतलब एक तरह से कहें तो ये जन्मजात है, बच्चे की आंख की बनावट ही इस तरह की, इसलिए ये दोष हो रहा है।
1: ये हम डायरेक्टली तो जन्मजात नहीं बोलेंगे,
0: जी
1: पर जैसे ही बच्चा ग्रो कर रहा है, मान लीजिए हमारा हाइट बढ़ रहा है और बच्चा ग्रो कर रहा है, वैसे उस हिसाब से एज अप्रोप्रिएट अगर साइज नहीं होता है तब साइज बड़ा हो जाता है, आंख का साइज तब ये हो जाता है, तभी ठीक इमेज नहीं बनता है, तो उसके वजह से
0: जी
1: हम लेते हैं और बिकॉज उसे धुंधला दिखता है।
0: जी तो अब जैसे आइडेंटिफाई हो गया कि बच्चे के मायोपिया है, इस तरह की समस्या है कि उसको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, पास की तो सब कुछ ठीक है उसकी नज़र, तो फिर एक सलाह और डॉक्टर की वो बनती है ओपिनियन कि भाई अब इसको सही कराया जाए, उसके चश्मा लगाया जाए, यही इसका इलाज है।
1: हाँ, चश्मा ही इसका इलाज है, कॉन्स्टेंटली चश्मा लगाएगा यानी हमेशा चश्मा लगाएगा, ये नहीं कि स्कूल गए तब हम चश्मा लगाए, एक बार नंबर आ गया है मायोपिया माइनस हो या उसके साथ कभी सिलेंडर नंबर आता है उसको मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, जब भी हम स्कूल गोइंग बच्चे या बच्चे को चश्मे का नंबर आ जाता है उनको कंटिन्यूअसली चश्मा लगाना है, चश्मा ही इसका मेन इलाज है।
0: जी
1: बाकी आगे मायोपिया ना बढ़ने के लिए उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लिया जा सकता है।
0: जी जैसे क्या हो सकती है उसमें, चलो चश्मा हमने लगा दिया, लेकिन अब जो
1: हाँ
0: आगे की और जो देखभाल है, जो खान पान की है, रहन सहन की है या उसकी है, वो क्या हो सकती है।
1: हाँ तो ये जो खान पान रहन सहन बेसिकली हमारे लाइफ स्टाइल, कुछ हमारे जो हैबिट है उनको हमें बदलने पड़ेंगे। जैसे आजकल हमारा सारा चीज मोबाइल पे होता है, तो बच्चे पूरा मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं, होमवर्क मोबाइल में आता है, एंटरटेनमेंट मोबाइल से होता है, तो द फर्स्ट थिंग या जो मेन चीज हमें करना है कि मोबाइल से दूर रखना है, मोबाइल टोटल नो हो जाना चाहिए स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। इनकेस जो कंप्यूटर का काम है या स्क्रीन का काम है वो हम जितना जरूरी उतना ही करें, बाकी होमवर्क हम नोटबुक

0: में कर सकते हैं, प्रिंटआउट लेके कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि डिजिटल टाइम को हम टोटली अवॉइड कर ले, स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज कर दे, जितना कम से कम हम मोबाइल यूज करें उतना ही बेहतर है
1: जी। इसमें कुछ जैसे आउटसाइड एक्टिविटी घर से बाहर होती है, पहले बच्चे एक खेलने के लिए बड़े आतुर रहते थे कि कब होमवर्क खत्म हो, कब स्कूल खत्म हो, माता पिता की बंद से थोड़ी खत्म हो, तो हम सुबह शाम जाके घर से बाहर खेल आए, लेकिन वो आउटडोर एक्टिविटी आजकल नहीं बच्चों में देख रही है, बड़ा लेथार्जिक।
0: बच्चे मोबाइल को ही एंटरटेनमेंट डिवाइस जैसे यूज कर लेते हैं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: आउटडोर जो खेलने के लिए उनका टाइम है वो बहुत कम हो गया है। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है या बहुत मुख्य कारण है जिसको अगर हम चेंज करें अपने लाइफस्टाइल में, प्रतिदिन 1 घंटा एटलीस्ट आउटडोर करें, थोड़ा बाहर खेलने के लिए जाए, भले ही वो वॉक हो जाए, वो साइकिलिंग हो जाए, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, पर आउटडोर एक्टिविटी को ध्यान देकर, या स्कूल में जैसे पीई पीरियड्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी क्लासेस होते हैं, उसमें उसको भी टीचर्स को इम्पोर्टेंस देना है कि यही आउटडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स को हर बच्चे को कंपलसरी करवाना है।
1: जी जी मतलब अब उनको जो पहले अंदर रोकने के लिए सजेशन देते थे, अब वो चीजें बाहर बच्चे को भेजने के लिए हमें फोर्सफुली ही करनी पड़ेंगी, भले ही कितना ही वो करना पड़े, लेकिन वो हेल्थ के लिए आवश्यक है।
0: हाँ
1: जी जी
0: आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाना है, इंडोर नहीं रहना है, स्क्रीन टाइम को कम करना है, अंधेरे में नहीं पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है, जब हम पढ़ रहे हैं तो सही से बैठ के करेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके पढ़ाई करनी है,
1: लाइट ठीक रखनी है। जी जी कुछ आई एक्सरसाइज आप बताना चाहें, जैसे आजकल हम कई बार देखते हैं, पहले जब हमारा समय था तो खुले आसमान को देखने की बहुत आदत होती थी, बाहर बहुत देखते थे, लेकिन आजकल ये दूर देखने की एक्टिविटी तो हो ही नहीं पाती है, तो ये कुछ आंखों की एक्सरसाइज आप बताना चाहें।
0: जब हम कंटिन्यूअसली नजदीक का काम कर रहे हैं, जैसे बड़े बच्चे हैं 7th से 10th तक बच्चे, उन लोगों को पढ़ाई करनी है रेगुलरली, कॉन्स्टेंट पढ़ाई के बीच में उनको एवरी 1 आवर में सम 15 to 20 मिनट्स के लिए वो रेस्ट ले सकते हैं, यानी दूर देख सकते हैं, ताकि आंख के मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम छोड़ें। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज वैसे हम रेकमेंड नहीं करते, बट चश्मा हमेशा लगाना है और बीच में ब्रेक लेके पढ़ाई कर सकते हैं।
1: जी आजकल जिस तरह का प्रोग्रेसिव चश्मे की वो एक फैसिलिटी आ गई है, क्या इसमें वो ठीक रहेगा कि ऐसा चश्मा बनवा लिया जाए जो दूर का पास का एक ही हो, अगर हमें 24 घंटे लगाना है तो?
0: मायोपिया में हमें प्रोग्रेसिव की वैसे जरूरत नहीं है।
1: जी
0: मायोपिया उनके माइनस नंबर है, मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस में कुछ चश्मा स्पेसिफिक आते हैं। मायोपिया के अलावा जो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है कि आजकल के बच्चों में मायोपिया जल्दी बढ़ भी जाता है, बहुत फास्ट बढ़ता है ये मायोपिया के नंबर, आज -2 है, 6 महीने से पहले ही ये नंबर -3 -4 तक चला जाता है।
1: जी इसका मतलब जैसे ही पता लगे तो तुरंत ही, कम से कम चश्मा तो तुरंत ही लगवाना है ना?
0: चश्मा तो तुरंत ही लगवाना है, बाकी ये सारे जो प्रिकॉशंस या जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग बदल करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और मायोपिया को ना बढ़ने के लिए ड्रॉप्स आते हैं, तो रेगुलर चेकअप में अगर हमारा आंख का साइज बढ़ता है, चश्मा नंबर बढ़ जाता है जल्दी, तो ड्रॉप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, स्पेशल एंटी मायोपिया ग्लासेस आते हैं, वो भी हम रेकमेंड करते हैं पहनने के लिए।
1: जी जी चलिए आपने काफी कुछ चीजें बताई, कुछ और जिन चीजों को आप एक बार रिपीट करना चाहें दोबारा से हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बताना चाहें कुछ चीजें?
0: एक्चुअली हम ये सब आज क्यों डिस्कस करना चाहते हैं ज्यादा, बिकॉज ये जो हफ्ता है हमारा, ये मायोपिया अवेयरनेस वीक जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है।
1: ओके
0: कि हम एटलीस्ट सबको ये बताएं कि मायोपिया एक जस्ट चश्मा नंबर नहीं है, मायोपिया एक बीमारी है या एक प्रॉब्लम है जो बच्चों में शुरुआत होके बड़ों में भी कभी कभी नंबर आ सकता है, पर इसको बहुत ध्यान देके हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि जिन पेरेंट्स को भी माइनस नंबर है उन बच्चों को जल्दी आ सकता है नंबर, उन बच्चों में ज्यादा चांसेस है आने में, उन बच्चों में मायोपिया नंबर बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार नंबर आ गया नंबर कम नहीं होता है,
1: जी तो
0: नंबर बढ़ने के चांसेस हैं।
1: हाँ,
0: तो हमें वैसे प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए।
1: जी चलिए आपने एक अच्छी जानकारी, कम से कम एक श्रोताओं को ऐसी जानकारी जो हम ये मान लें कि अगर आंखों में मायोपिया है तो चश्मा हमें लगाना ही है, और साथ ही साथ जो चीजें हमें और ऑब्जर्व करनी है कि उसकी देखभाल करनी

0: है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है तो ये भी आवश्यक है। श्रोता बंधुओं, आप थी डॉक्टर शोभिता रथ जी, आप वरिष्ठ सर्जन हैं आँखों की, जो बच्चों की समस्या होती है ऑप्थोलमेजी की। डॉक्टर रथ, आप हमारे साथ जुड़ी मथुरा आकाशवाणी के साथ, आपने मायोपिया पर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो बच्चों, अभी आपने मायोपिया के बारे में डॉक्टर साहब से ये जानकारी सुनी। ये जानकारी दे रही थी डॉक्टर शोभिता रथ, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, डॉक्टर श्रॉफ आई केयर इंस्टीट्यूट वृंदावन से। तो बच्चों, अब एक गीत हो जाए, थोड़ा मनोरंजन कर लें।

अभी आपने ये गीत सुना। और बच्चों अब देखो हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे बच्चे जब भयानक दुर्घटना को देखते हैं ना तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन्हें साइकोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के सामने अपनी चिंताओं और दुख के विषय में एक दूसरे से बात ना करें, इससे बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। बच्चों को चाहिए एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल उपलब्ध कराएं, बच्चों के साथ कुछ समय उनको भी दें, अपना समय उन्हें दोस्त बनाएं, उनके साथ बच्चे बनकर खेलें, बच्चे की उम्र और ग्रोथ के अनुसार उन्हें काम सिखाएं ताकि उनका मानसिक विकास हो जाए, और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार काम दें जिससे कि उन्हें काम में मजा आएगा करने में। अगर बच्चों को गार्डनिंग का शौक है तो छुट्टी वाले दिन उनसे कह दें कि वो कुछ पौधे लगाएं। उन्हें पेंटिंग या चित्र का शौक है तो छुट्टी वाले दिन उन्हें उसको शौक को पूरा करने दें। उनके शौक को नज़रअंदाज ना करें, कोई भी काम करते समय उनसे प्यार से बात करें, उन्हें चिल्लाएं नहीं। और बच्चों अब हम आपको एक बाल नाटिका सुनवाते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती।

0: eso a ti.
1: स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म ऐसे समय में हुआ जब देश में अंधविश्वासों और कुरीतियों का बोलबाला था। वर्ष था 1825 और तारीख 12 फरवरी। गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में एक ब्राह्मण अंबाशंकर के घर पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र का नाम रखा गया मूलशंकर। यही बालक बड़ा होकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुआ। बालपन से ही मूलशंकर की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी।
2: सुनो, अपने मूलशंकर की बुद्धि बड़ी तेज है। श्लोक और मंत्र तो उसे एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है।
3: हाँ, सभी कहते हैं कि मूलशंकर बहुत होनहार बालक है।
2: मैं चाहता हूँ कि अब की बार शिवरात्रि पर मूलशंकर भी हमारी तरह व्रत रखे।
3: मूलशंकर तो बहुत आज्ञाकारी है, व्रत रखने से वो इनकार नहीं करेगा। मगर अभी तो केवल 10 वर्ष का ही है बेचारा, बहुत कष्ट होगा उसे।
2: ठीक है, अब नहीं तो कुछ समय बाद सही, लेकिन हमारे रीति रिवाजों के अनुसार उसे व्रत तो रखना ही पड़ेगा।
1: बात 1839 की है। मूलशंकर लगभग 14 वर्ष का हो गया। शिवरात्रि का त्योहार आया तो माता पिता की इच्छा अनुसार उसने निर्जल व्रत रखा। मूलशंकर के मन में बाल सुलभ उत्साह था। घर में व्रत का भोजन तैयार हो रहा था, पूजा पाठ की तैयारियां हो रही थीं।
3: अजी, मैंने कहा लोग तो मंदिर में पहुंचने शुरू हो गए हैं।
2: हाँ, जा रहा हूँ। अरे मूलशंकर
4: आया। पिताजी
2: आए, सारी रात जागरण भी तो करना है।
4: जी।
2: आओ मेरे साथ मंदिर चलो, वहाँ भजन कीर्तन होगा तो रात भी आराम से बीत जाएगी।
4: चलिए पिताजी।

0: बेटे मूल शंकर,
1: जी
0: देखो सब आराम कर रहे हैं, तुम भी थोड़ी देर के लिए लेट जाओ।
1: नहीं पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि शिवरात्रि के व्रत में ना तो खाना पीना होता है और ना ही सोना।
0: सो तो ठीक है,
1: लेकिन यहाँ तो सारे शिव भक्त सोना शुरू हो गए हैं।
0: सो नहीं रहे, आराम कर रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मैं तो लेट रहा हूँ।
1: मगर पिताजी, आपने कहा था कि सोने वालों पर भगवान शिव नाराज होंगे। मैं जागता रहूंगा तो भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न होंगे ना?
0: हो बेटे, कहते तो तुम ठीक हो।
1: अरे इतने चूहे शिवलिंग पर क्यों घूम रहे हैं? जरा देखो तो। ये सारे चूहे भक्तों के चढ़ाए फल फूल और मिठाई खा रहे हैं। अरे इन चूहों को तो भगवान शिव का भी डर नहीं, ये भगवान शिव की मूर्ति पर कैसे कूद रहे हैं? जिस महादेव जी की कथा पिताजी ने मुझे सुनाई थी, क्या ये वही है? पिताजी ने कहा था कि ये सारे संसार की रक्षा करते हैं, मगर ये इन तुच्छ चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये सच्चे शिव नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।

इस घटना ने मूल शंकर के विश्वास को हिला दिया। वो सोचने लगे कि वास्तविक शिव कोई दूसरा है। तभी उन्होंने दूसरे शिव की खोज करने का निश्चय कर लिया।

0: एक दिन किसी से कुछ बताए बगैर वो घर छोड़कर चुपचाप चल दिए। मन में एक ही भावना थी, सच्चे शिव की खोज की, उनके दर्शन की। आखिर एक दिन स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने मूल शंकर को पूर्ण संन्यास की दीक्षा दी, साथ ही उनका नया नामकरण किया दयानंद सरस्वती। लगभग 35 वर्ष की आयु में स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाकर दयानंद ने उनसे सब शास्त्र पढ़े। जब विदा का समय आया तो गुरु ने दयानंद को आदेश दिया कि
1: दयानंद, तुम्हारी शिक्षा आज पूर्ण हुई।
2: जी गुरुदेव, सांसारिक चीजें तो मैं पहले ही त्याग चुका हूँ। गुरु दक्षिणा के लिए अब केवल मैं अपने आप को ही आपके चरणों में समर्पित करने के लिए बचा हूँ।
1: ठीक है, तब मैं तुम्हें ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा।
2: आज्ञा दीजिए गुरुदेव।
1: तो जाओ, देश में फैले पाखंड और अशिक्षा के अंधकार को दूर करो। इस समय देश में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है, कुरीतियां फैली हैं, इन्हें हटाओ। प्यारे दयानंद, मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए।
2: ऐसा ही होगा गुरुदेव।

बस फिर क्या था, गुरु का आदेश मान दयानंद कल्याण यात्रा पर निकल पड़े। मूर्ति पूजा, तंत्र विद्या, चोरी, छल कपट आदि को दूर करने के लिए दयानंद ने चारों ओर वैदिक धर्म का प्रकाश फैला दिया। इसी उद्देश्य से 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने पाखंड, कुप्रथाओं, गौवध और बाल विवाह का विरोध किया। जगह जगह गुरुकुल खुलवाकर शिक्षा के द्वार खोले। इतना ही नहीं, सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में दयानंद ने सक्रिय योगदान भी दिया। उन्होंने हमेशा राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। देश की खुशहाली के लिए वो स्वदेशी राज का पक्ष लेते रहे। इसी सिलसिले में एक बार किसी अंग्रेज अधिकारी को स्वामी दयानंद ने बातों ही बातों में चारों खाने चित्त कर दिया।

0: मिस्टर दयानंद,
1: आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि हमारा वजह से यानी अंग्रेजों का वजह से इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, तरक्की किया है। अगर हम ना होता तो तुम लोगों का कुछ भी भला नहीं होने को सकता था, समझा?
2: ये आपका झूठा अभिमान है।
1: What?
2: जिसे आप उन्नति या प्रगति मानते हैं वो तो सिर्फ दिखावा है। धर्म भ्रष्ट लोगों ने कभी किसी व्यक्ति का या किसी देश का कल्याण नहीं किया।
1: धर्म भ्रष्ट? What do you mean by this धर्म भ्रष्ट?
2: अपने पास जो है उससे संतुष्ट रहना।
1: हा?
2: दूसरों की भूमि पर छल कपट से अधिकार न करना ही धर्म है, मगर इसके विपरीत आचरण करना धर्म भ्रष्ट होना कहलाता है।
1: पट पट पट पट, लेकिन आपका देश ज्यादा खुशहाल होता है इस वक्त।
2: बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ के कुछ निवासियों की ऊपरी खुशहाली को आप देश भर की खुशहाली मानते हैं।
1: हो, यू इंडियन, अगर ये देश हमारा हुकूमत में खुशहाल नहीं होने को सकता है तो फिर किसका हुकूमत में खुशहाल होने को सकता है, बोलो?
2: अपने यानी स्वदेशी राज में खुशहाल होगा। अपना राज कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह विदेशी राज के मुकाबले भला ही है।
3: स्वामी दयानंद सरस्वती स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ साथ देश में सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास करते रहे। 30 अक्टूबर 1883 को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया, किंतु उनके आदर्श आज भी जीवित हैं।

अभी आपने ये बाल नाटिका सुनी स्वामी दयानंद सरस्वती। और अब हम अपने कार्यक्रम का समय समाप्त करते हैं। हमारे कार्यक्रम का पता नोट करिए, बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003। बच्चों जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम पेश किया निधि मित्तल ने। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है काव्य गोष्ठी। आज की काव्य गोष्ठी में प्रतिभाग कर रहे हैं अनुपम गौतम, रेणु उपाध्याय, चंद्र प्रकाश शर्मा, और इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: श्रोताओ जय हिंद। आज काव्य गोष्ठी को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं और इस काव्य गोष्ठी का शीर्षक रखा गया है सिंदूरी मांग। आप समझ ही गए होंगे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ विशेष में यह काव्य गोष्ठी आप तक आज पहुंचना चाहती है। मेरे कवि परिकर में आज इस काव्य गोष्ठी में जिनका सानिध्य प्राप्त है उसमें कवि कुल के वरेण्य हस्ताक्षर आदरणीय चंद्र प्रकाश मैथिल हमारे साथ रहेंगे। साथ में रहेंगे श्री अनुपम गौतम जिनका स्वर देश और देश से बाहर आज गुंजायमान है। ब्रज कोकिला के नाम से जो सुविख्यात हैं ऐसी आदरणीय बहन श्रीमती रेणु उपाध्याय ब्रज रेणु। और इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहा हूं मैं आपका अपना जितेंद्र सिंह। बंधुओं जैसा कि आज की इस काव्य गोष्ठी का शीर्षक रखा गया है सिंदूरी मांग, तो यह स्पष्ट होता है कि आज की कविता का जो मूल केंद्र भाव रहेगा वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होना ही चाहिए। मैं पहले कवि को आप तक सौंपता हूँ और हमारे साथ हमारी बहन रेणु उपाध्याय ब्रज रेणु यहाँ हैं। मैं उन्हें इन 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ जिसमें आप महसूस करेंगे कि यही वास्तव में कवि का धर्म है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, स्वीकार करें कि देश के लिए नहीं जिए तो व्यर्थ जीवन है। देश के लिए नहीं जिए तो व्यर्थ जीवन है। बस एक इसी बात पे अड़े रहेंगे हम, बड़ी सोच बड़े काम करते रहेंगे यदि, तब ही समाज दृष्टि में बड़े रहेंगे हम। खाते इस देश का और गाते दूसरों के गीत, उनके लिए तो कड़े रहेंगे हम। राष्ट्र के विपक्ष में खड़े हुए हैं जो भी लोग, राष्ट्र के विपक्ष में खड़े हुए हैं जो भी लोग, उनके विपक्ष में सदा खड़े रहेंगे हम।
2: क्या बात है,
1: उनके
2: वाह वाह
1: विपक्ष में सदा खड़े
2: वाह।
1: रहेंगे। एक लेखनी ऐसी भी है हमारे ब्रजमंडल से जो पूरे देश भर में भाले की नोक की तरह से दिखाई देती है, वो लेखनी होती है श्रीमती रेणु उपाध्याय ब्रज रेणु की। उन्होंने प्रेम के गीत भी लिखे हैं लेकिन आज राष्ट्र के गीत पढ़ने की मुझे पूरा पूरा भरोसा है, उम्मीद है। बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वीकार करें ब्रज रेणु।
3: नमस्कार। जैसा कार्यक्रम का शीर्षक है सिंदूरी मांग, तो बस यहीं से कुछ पंक्तियों से आपको जोड़ते हुए अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ।
1: स्वागत स्वागत।
3: मांग में भरते घर बस जाता ये महिमा सिंदूर की।
1: आहा।
3: मांग में भरते घर बस जाता ये महिमा सिंदूर की। बसे बसाए उजड़े कुछ घर कुमती हुई मति क्रूर की।
1: क्या बात।
3: पहले

अब तो खाक करके मानेंगे, तेरी लंका को अब तो खाक करके मानेंगे। तो इस वातावरण में, इन हालातों में देशवासियों से कहना चाहूंगी, तोड़ भी दो ये अज्ञान की बेड़ियां, जागने में नहीं करनी अब देरियां। संस्कृति चार दिन का चलन तो नहीं। सिंदूरी मांग हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है, हमारी सिंदूरी संस्कृति चार दिन की नहीं।

0: इसके पोषण में कितनी खपी पीढ़ियां। इस
1: हाँ
0: तो हमें चाहिए अब कि देश के वेश को अब बदल डालिए। जैसा पहले चल रहा था उसको बदलना पड़ेगा। देश के वेश को अब बदल डालिए,
1: हाँ
0: वेश को जोश के रंग में रंग डालिए, जोश में होश कायम रखेंगे सदा,
1: हाँ वाह
0: जोश
1: वाह
0: में होश कायम रखेंगे सदा, देश के दुश्मनों को कुचल
1: क्या बात है, वाह
0: डालिए,
1: वाह वाह
0: देश के
1: वाह
0: दुश्मनों
1: वाह
0: को
1: वाह
0: कुचल
1: जाइए, क्या
0: डालिए।
1: बात है भाई।
0: और बड़ों की नहीं, बच्चों की भी मनोदशा का एक बाल गीत की कुछ पंक्तियां निवेदित करूंगी।
1: स्वागत स्वागत।
0: बच्चों का भी जोश कैसा है इस समय। अम्मा अब वर्दी सिलवा दे, मैं सीमा पर जाऊंगा, देश धर्म रक्षा की खातिर अपना शीश कटाऊंगा।

करूंगा। और क्या बालक की क्या मनोभाव है, मुझको भी पापासा बनकर काम देश के आना है, मुझको भी

0: देश धर्म रक्षा की खातिर अपना शीश कटाऊंगा।
1: क्या बात है, क्या
0: और
1: बात?
0: बच्चा क्या कहता है, जल्दी से जल्दी अम्मा अब मेरी वर्दी सिलवा दे तू, जल्द से

0: देश धर्म रक्षा की खातिर अपना शीश कटाऊंगा।
1: क्या बात है वाह।
0: अम्मा अब वर्दी सिलवा दे, मैं सीमा पर जाऊंगा। देश धर्म रक्षा अपना शीश कटाऊंगा।
1: क्या बात है, क्या
2: वाह
1: बात
2: वाह
1: है, क्या
2: वाह
1: बात है भाई। बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर मुक्तक और बहुत सुंदर मनोभाव आपने शब्द चित्र जो खींचे हैं उनके लिए हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा इसी अनुक्रम में मैं अपने बड़े भाई आदरणीय चंद्र प्रकाश मिश्र मैथिल जी को आवाज देता हूं कि वे अपना काव्य पाठ अपने श्रोताओं तक पहुंचाएं।
3: एक दो मुक्तक और अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं।
1: स्वागत भैया।
3: जो सिंधु

0: तुमको अभियानी सिंदूर की
1: क्या बात है, क्या
0: वरना
1: बात है भैया, वाह वाह
0: कसक
1: वाह।
0: रहेगी हरदम अभियानी सिंदूर की। और इस सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे तमाम बलिदानियों ने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद और वर्तमान के परिदृश्य में भी बलिदान जो दिए हैं उनका राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इसी भाव को प्रदर्शित करने के लिए ये बंद देखें कि जिंदगी हमको देने को ओढ़ा कफन,
1: वाह
0: जिंदगी हमको देने को ओढ़ा कफन, जिनके बलिदान से आज महक का चमन।
1: हाँ।

0: ऐसे अनुपम शहीदों को शत शत नमन।
1: क्या बात है, क्या
0: ऐसे
1: बात है, क्या बात
0: अनुपम
1: है।
0: शहीदों को शत शत नमन। और एक रचना देखें कि कैसी कैसी विषम परिस्थितियां जो आज आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं।
1: जी भैया है।
0: कि भूल गए हम संसत्ता मन वाली अमर कहानी को।
1: क्या बात है,
0: कि भूल गए।

0: हम पन्ना जैसी ममता की बलिदानी को
1: क्या बात?
0: याद करें, नेता सुभाष जैसे अनुपम सेनानी को याद करें, हम मंगल पांडे वाली अथक रवानी को याद करें, अब्दुल हमीद की अमर हुई कुर्बानी को याद करें, हम भगत सिंह की पानीदार
2: जवानी को
0: याद करें, हम भगत सिंह की पानीदार जवानी को, इन बलिदानों के कारण ही आजादी मिल पाई थी।
3: क्या बात है, वाह।
0: कि इन बलिदानों के कारण ही आजादी मिल पाई थी, इन बलिदानों के कारण ही चहक उठी तरुणाई थी, इन बलिदानों के कारण हर तन मन में अरुणाई थी, इन बलिदानों के कारण ही महक उठी अमराई थी, इन बलिदानों के कारण ही महक उठी अमराई थी, हमने सोचा था ये सपने अपने साथ निभाएंगे, हमने सोचा था ये सपने अपने साथ निभाएंगे, हमने सोचा था ये सपने जीवन को चमकाएंगे, हमने सोचा था ये सपने सदियों को महकाएंगे, हमने सोचा था ये सपने युगों युगों तक जाएंगे, सोचा था ये सपने युगों युगों तक जाएंगे, कि स्वर्णिम सपनों की आंखों में जाने कैसी पीर है, आजादी के बाद ये भारत की कैसी तस्वीर,
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: आजादी के बाद ये भारत की ऐसी तस्वीर है। और पाकिस्तान को आप सबकी तरफ से, भारतवासियों की तरफ से मैं चेतावनी भरे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारत हूँ, रामचरित सा मर्यादा में रहता हूँ।
1: आये हाय, क्या बात है,
0: कि मैं भारत हूँ, रामचरित सा मर्यादा में रहता हूँ, रुधिर संस्कारी बनकर हर भारतीय में बहता हूँ, जोर जबर या जुल्म सितम एक सीमा तक ही सहता हूँ, अपनी हद में रहो पाक सीमा में रह कर कहता हूँ, अपनी हद में रहो, क्योंकि अभी अपनी सीमा पार नहीं की हमने, सीमा में रह करके 100 किलोमीटर अंदर तक वार किए।
3: क्या बात है, वाह।
0: तब कहना चाहता हूँ कि मैं भारत हूँ, रामचरित सा मर्यादा में रहता हूँ, रुधिर संस्कारी बनकर हर भारतीय में बहता हूँ, जोर जबर या जुल्म सितम एक सीमा तक ही सहता हूँ, अपनी हद में रहो पाक सीमा में रह कर कहता हूँ, तुम ना पाक इरादे छोड़ो पाक अगर कहलाते हो, तुम ना पाक इरादे छोड़ो पाक अगर कहलाते हो, जेहादों से नाता तोड़ो पाक अगर कहलाते हो, आतंकी पंजे को मोड़ो पाक अगर कहलाते हो, मानवता से रिश्ता जोड़ो पाक अगर कहलाते हो,
1: क्या
0: सोचा था देख गया भारत कुछ गर्म भयारों से, क्या सोचा था

0: क्या सोचा था सहम गया भारत कुछ स्वांशी आरों से, क्या सोचा था धधक गया भारत जिहादी नारों से, क्या सोचा था दहल गया भारत आतंकी वारों से। कि नकली नोट चला भारत की अर्थव्यवस्था से खेला, नकली नोट चला भारत की अर्थव्यवस्था से खेला, तेरे आतंकी वारों को सीने पर हमने झेला, तेरे आतंकी वारों को सीने पर हमने झेला। छद्म युद्ध से क्या होगा, क्या भारत है गुड़ का ढेला, हिम्मत है तो सामने आ फिर देख मौत का तू मेला।
1: क्या बात है, क्या बात
0: है, फिर देख मौत का तू मेला।
1: क्या तेवर है,
0: अमन परिंदे के पंखों में षड्यंत्रों का तीर है, अमन परिंदे के पंखों में षड्यंत्रों का तीर है, रहना पाक न समझो भारत जंग लगी शमशीर।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह वाह,
0: समझो भारत जंग लगी शमशीर है।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। मेरे श्रोता, आपकी इस कविता को सुनकर आपने अंदर रोमांच महसूस कर रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है। आइएगा, मैं एक और बुलंद स्वर के लिए आपको ले चलता हूँ। मेरे साथ हैं श्री अनुपम गौतम जी। पंक्तियां निवेदित करता हूं उनके सम्मान में। किसी अन्याय से डरकर अच्छाई हार ना जाए, किसी अन्याय से डरकर अच्छाई हार ना जाए, खर्च के सामने गाढ़ी कमाई हार ना जाए, मोहब्बत में कोई जीते या हारे मुझको क्या करना, मगर सरहद पे खड़ा मेरा भाई हार ना जाए, मगर सरहद पे खड़ा मेरा भाई हार ना जाए। इन दिनों हर एक लेखनी आज सरहद पे जितने भी जवान खड़े हुए हैं उनके साथ खड़ी हुई है, उनके लिए लिख रही है और लिख नहीं रही है, दहाड़ रही है, उसमें एक स्वर बुलंद होता है भाई श्री अनुपम गौतम जी का। बड़े आदर सम्मान के साथ बुलाता हूँ आदरणीय अनुपम गौतम।
2: राधे राधे भाई जितेंद्र जी। देश के शहीदों की बात करते हैं और देश की सरहद पे खड़े जवानों की बात करते हैं। चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं कि देश की सरहद पे जो जवान खड़ा है, देश की सरहद पे जो जवान खड़ा है, समझ लो बचाव का विधान खड़ा है, कहने को कोई कुछ भी कहे सच तो यही है, ये खड़े तभी ये संविधान खड़ा है।
1: क्या बात है,
2: जो भारतीय संस्कृति का तेवर है वहां हम आध्यात्मिक चेतना की बात करते हैं, लेकिन जब युद्ध की आवश्यकता होती है तो आत्म भला भी रखते हैं। चार पंक्तियों से शुरू करता हूं, भारतीय संस्कृति का उदाहरण देखिएगा। के अधरों पर गंगा जल दय शिवाला भी रखते हैं,
1: वाह,
2: अधरों पर गंगा जल हृदय शिवाला भी रखते हैं, और हृदय में देश प्रेम की ज्वाला भी रखते हैं,
1: वाह,
2: और

0: एक हाथ माला दूजे में भाला भी रखते हैं।
1: अच्छा प्रयोग है,
0: एक हाथ माला दूजे में भाला भी रखते हैं। लोग कहते हैं आवश्यकता क्या थी इस मिशन सिंदूर की, तो मैंने एक गीत छोटा सा लिखा है
1: जी।
0: और उसमें ये बताया कि क्या आवश्यकता थी। केसर की क्यारी से हमने अपना देश सजाया था, केसर की क्यारी से हमने अपना देश सजाया था और सपनों को सत्य के आयु भारत भव्य बनाया था। उन सपनों पर काली दृष्टि डाली थी कुशवाहों ने, केसरिया क्यारी में आग लगा दी थी मस्तानों ने, केसरिया क्यारी में आग लगा दी थी मस्तानों ने। उन मस्तानों की मस्ती का मरना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी। उन मस्तानों की मस्ती का मरना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी था। क्षमादान देते आए थे अब तक हम नादानी में,
1: वाह,
0: क्षमादान देते आए थे अब तक हम नादानी में, इसीलिए तो उजड़ी मांग सिंदूरी इस नादानी में, इसीलिए तो उजड़ी मांग सिंदूरी उस नादानी में। जो जैसा होता है वो वैसा ही तो अपनाता है, कायर और गद्दारों को तो मृत्यु दंड सुहाता है, पाकर दंड दंडों का अब डरना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी था।
1: क्या बात है,
0: ये करना बहुत जरूरी था। मुंबई से लेकर पुलवामा तक के हमले झेले हैं, मुंबई से लेकर पुलवामा तक के हमले झेले हैं, लगातार हर बार शौर्य से खूनी होली खेले हैं, लगातार हर बार शौर्य से खूनी होली खेले हैं। सेना की अनुपम ताकत को राजनीति का साथ मिला, पहली दफा जख्मों को एक मरहम वाला हाथ मिला, उन घावों का मरहम से अब भरना बहुत जरूरी था।
1: क्या बात है,
0: उन घावों का मरहम से अब भरना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी था। बहनों का बदला लेने बहलों ने रण में भाग लिया, पहली बार आपने देखा होगा सेना का नेतृत्व दो महिलाओं ने किया इस बार।

0: बहनों का बदला लेने बहनों ने रण में भाग लिया। दुर्गा और भवानी बनकर रण में जाकर युद्ध किया। मर्दानी ताकत को दिखाए रणचंडी के आगे सारे महिषासुर फिर हारे थे। इन दुष्टों के प्राणों का हरना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी था। सांप पल रहे थे जाकर उस बामी का संहार किया। सांप पल रहे थे जाकर उस बामी का संहार किया। अब की दफा आतंकों की जड़ पर हमने वार किया। कहते थे चाणक्य जड़ों पर मट्ठा देकर बढ़ना है, रक्त बीज का रक्त गिरे ना खप्पर लेकर लड़ना है। बार बार दहशत से मित्र उबरना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी था, ये करना बहुत जरूरी। आइए ये जो देशभक्ति की बात है इस भावना को और आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम का संचालन अब तक कर रहे हमारे छोटे भाई युवा कवि और इस समय देश में जिनकी आवाज़ हर रस में और हर रंग में जा रही है, आदरणीय जितेंद्र सिंह विमल जी हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं आप उनको सुने, उनका बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, जैसा कि आप आज सुन रहे हैं, काव्य गोष्ठी का शीर्षक रखा गया है सिंदूरी माँ। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ विशेष में यह गोष्ठी। मैं चार पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ। ये माना देखी दुनिया ने पड़ोसी क्रूर की ताकत, ये माना देखी दुनिया ने पड़ोसी क्रूर की ताकत, कहर बरपा रही है देखो अब सिंदूर की ताकत। कहर बरपा रही है देखो अब सिंदूर की ताकत, है कितना मूर्ख चनों की जगह चोबे चबा डाले, चनों की जगह चोबे चबा डाले, जहां टिकती ही नहीं है किसी मगरूर की ताकत।
0: क्या बात है, वाह।
1: जहां टिकती नहीं है किसी भी मगरूर की ताकत। और पंक्तियां ये भी निवेदित करता हूं, गर्व विरासत पर अपनी प्रत्येक वतन करता है, गर्व विरासत पर अपनी प्रत्येक वतन करता है, हम बिखरे बिखरे लोगों को एक वतन करता है।
0: हाय हाय, क्या बात।
1: जो निज रक्त चढ़ा देते हैं राष्ट्रदेव की खातिर, जो निज रक्त चढ़ा देते हैं राष्ट्रदेव की खातिर, श्रद्धा के जल से उनका अभिषेक वतन करता है।
0: क्या बात है,
1: श्रद्धा के जल से उनका अभिषेक वतन करता है। राष्ट्र किसी भी जाति धर्म से सदा बड़ा होता है, राष्ट्र किसी भी जाति धर्म से सदा बड़ा होता है, इसकी खातिर जो सतपथ पर अडिग

0: जिसकी रग रग में माटी का नशा चढ़ा होता है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जिसकी रग रग में माटी का नशा चढ़ा होता है। तो बंधुओं, तेरी पीड़ा जिस दिन रुद्र वीणा बन बोले और तब तू आंसुओं की माला बन जाएगी। रुद्र वीणा बन बोले और तब तू आंसुओं की माला बन जाएगी। ज्योति इंकलाब की न कोई भी बुझा सकेगा जिस दिन अग्निशिखा ज्वाला बन जाएगी। राष्ट्र देवता की वेदना का एहसास कर पीर जिस दिन तेरी छाला बन जाएगी। बोला हर शब्द बन जाएगा कटारू और मेरी लेखनी की नौक भाला बन जाएगी।
1: है, क्या बात है।
0: मेरी लेखनी की नौक भाला बन जाएगी। यक्ष प्रश्न खड़ा करना नहीं है बड़ा काम, हो सके तो उसका निदान बन के दिखा। बहुत सारे लोग इस ऑपरेशन सिंदूर के विपक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि यक्ष प्रश्न खड़ा कर ना नहीं है बड़ा काम, हो सके तो उसका निदान बन के दिखा। मानता हूं भगवान बनना कठिन पर इंसान है तू इंसान बन के दिखा। पापियों का बाप तक हाय हाय कर उठे ऐसे तीर के लिए कमान बन के दिखा। आज जब राहु की गिरफ्त में है सूर्य तब सूर्य मत बन आसमान बन के दिखा। सूर्य मत बन आसमान बन के दिखा। सूर्य मत बन आसमान बन के दिखा। एक छोटा सा गीत आपके आंगन में खड़ा करता हूं। लक्ष्य है निगाह में, वेग है प्रवाह में, एक तड़प है चाह में, जीत खड़ी राह में, टिमटिमा रहा है दीप शेषु अभिजान है,

0: अभिजान है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है। जिंदगी सफल रहे, आत्मबल प्रबल रहे, बुद्धि विमल रहे, भावना सजल रहे, दृष्टि में है आसमान, स्वप्न में उड़ान है, दृष्टि में है आसमान, स्वप्न में उड़ान है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है। जिंदगी में प्यास है, हाँ जिंदगी में प्यास है, झरने की तलाश है, फिर भी ये विश्वास है कि तृप्ति आस पास है, प्राण प्राण प्यास है, वो प्यास प्यास प्राण है, प्राण प्राण प्यास है, वो प्यास प्यास प्राण है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है, कि घात पे आघात कर, घात पे आघात कर, रात को प्रभात कर, मौत को भी मात कर, जिंदगी से बात कर, मौत को भी मात कर, जिंदगी से बात कर, आईना दिखा उसे जिसको भी गुमान है, आईना दिखा उसे जिसको भी गुमान है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है, ये समय समय नहीं है मेरा इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान है, मेरा इम्तिहान है। एक बहुत छोटी सी कविता आपके आंगन में रखता हूं, कि जो भी परिवर्तन चाहेगा अपनों से ही दुख झेलेगा, जो भी परिवर्तन चाहेगा अपनों से ही दुख झेलेगा, फिर भी डटा रहेगा रण में, लंबी वो पारी खेलेगा, किस्मत जो देगी वो देगी, उसको तो तुम बोनस मानो, कर्मठता का अनुरागी अपना हिस्सा हक से ले लेगा, अरे जब तक सांसों में सांसें हैं हर दुख हंस कर सहना होगा, कुछ तो करते रहना होगा, कुछ तो करते रहना होगा। नए जमाने में सब अपना ही अपना उत्कर्ष चाहते, नए जमाने में सब अपना ही अपना उत्कर्ष चाहते, बड़े मूर्ख हैं, दुख देते हैं और दुनिया से हर्ष चाहते, अरे मन की आंखें फूट गई वो आंखें होकर भी अंधे हैं, अंधों को बटेर भाती है और तुम भारतवर्ष चाहते, अविरलता में निर्मलता है, अविरलता में निर्मलता है, नदियां हो तो बहना होगा, कुछ तो करते रहना होगा, कुछ तो करते रहना होगा। और एक अंतिम बंद इसका स्वीकार करें, कि अपनी चाल मंद मत करिए, लेकर सबको साथ चलो तुम, लक्ष्य खड़ा बाहें फैलाए, निर्भय हो दिन रात चलो तुम, विश्व चलाने वाले ईश्वर का है आशीर्वाद अपरमित, एक हाथ चलता हो दुश्मन पूरे 11 हाथ चलो तुम, एक हाथ चलता हो दुश्मन पूरे 11 हाथ चलो तुम, अरे कोई साथी छूट ना जाए, कोई साथी छूट ना जाए, हाथ सभी का गहना होगा, कुछ तो करते रहना होगा, कुछ तो करते रहना होगा, कुछ तो करते रहना होगा। और मित्रों, आज ये काव्य गोष्ठी आप तक पहुंची, इस काव्य गोष्ठी में शामिल रहे आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश मिश्र मैथिल, श्री अनुपम गौतम और बहन श्रीमती रेणु उपाध्याय ब्रज रेणु। संचालन कर रहा था मैं आपका अपना जितेंद्र सिंह। इसी के साथ मुझे दें अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे ये काव्य गोष्ठी सिंदूरी मांग।
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: प्रातः के 10:30 होने को है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और ये गीत हम ले रहे हैं फिल्म बनफूल से।

पेंटर बाबू, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था मनोज कुमार ने, संगीत था उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अनहोनी फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले के स्वर में। और आइए आपको देते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 25 मई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के सभी श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है गर्भधान की समस्या, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप स्त्री संबंधी रोग जैसे मासिक धर्म की गड़बड़ी, पेल्विक दर्द, यूरिनरी समस्याएं, पीसीओएस, पीसीओडी, बांझपन आदि समस्या के समाधान के लिए पूछ सकते हैं ये सवाल डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ से। ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 25 मई 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

चलते चलते इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था जतिन ललित का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मोहन खनन, अमिताभ भट्टाचार्य और साथियों की आवाज में आपने सुना लुटेरा फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत था अमित त्रिवेदी का। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 11 बजने को हैं। आपको सुनवा रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है। लीजिए सुनिए हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाश हेलो आकाश हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
1: इंद्रभान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ सर। यहाँ तो काफी गर्मी बढ़ गया है, नर्सरी के बीच में, जंगली नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ, ऊपर में हूँ, ऊपर में नर्सरी के ऊपर में खड़ा हूँ सर। यहाँ पर हवा भी बढ़िया चल रहा है
1: जी, गर्मी तो अब सब तरफ हो गई है
2: जी सर। वो गर्मी का जो लू चलता है ना सर, वो शाम तक रहता है सर, खासकर रोड में जाएंगे
1: जी
2: गरम गरम हवा लगता है। अगर गाड़ी अब चल रहे बस में तो खिड़की तरफ भी ध्यान दीजिएगा सर, उसका हवा एकदम लू चलता है। या बाइक में जा रहे हैं तो लोगों से आग्रह करूंगा सर कि जैसे बाइक में जा रहे हैं तो गमछा से बढ़िया से ढांक लें पूरा चेहरा को,
1: बिल्कुल
2: लू में एकदम सर, एकदम शरीर पूरा चेहरा जलन टाइप का होता है।
1: सावधानी की बहुत आवश्यकता है इस मौसम में
2: जी सर। पानी भी खूब पिए सर, प्याज भी रखें, खीरा ककड़ी कलिंदर भी खाएं सर, और जानवरों को नहला के एकदम छाए जगह में बांधें सर, उनको भी ताजा भोजन दें, बासी भोजन ना दें, पानी का भी खूब बचत करें सर। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागते हैं तो उनको भी ध्यान दें। घर में जरूरी बाहर निकले, सरकारी नौकरी करने वाले व्यवसाय वाले तो जाएंगे सर, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और पानी का भी बचत करना बहुत जरूरी।
1: बहुत अच्छा संदेश है आपका, अब फरमाइश बता दीजिए।
2: फिल्म का नाम है वारंट, देवानंद जी का फिल्म का गाना है, गीत के बोले सुनो बराती, गायक किशोर कुमार, लता मंगेशकर। और सबसे पहले गीत आपको के निर्देशक साहब को, प्रभात श्रोता को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद
2: फोन साहब लिखिए सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: मैं कान्हा बोल रहा हूँ, मंडी चौराहे से। हाँ
1: कान्हा,
0: सर,
1: क्या करते हैं कान्हा?
0: मैं स्कूल जाता हूँ सर।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
0: मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ सर।
1: आजकल तो छुट्टियां चल रही होंगी आपकी,
0: हाँ सर,
1: क्या कर रहे हो छुट्टियों में?
0: छुट्टियों में पढ़ाई करते हैं सर।
1: छुट्टियों में भी कोई पढ़ाई करता है?
0: हाँ सर, थोड़ी देर खेलते फिर पढ़ाई करते हैं।
1: जी, आपने फोन किया है हेलो आकाशवाणी के लिए।
0: यस सर।
1: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: फरमाइश है, हमराज फिल्म का गाना है, नमो छुपा कर जियो ना सर झुका कर जियो।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश।
0: सर सर
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: सर जी, राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: सर मैं गांव उस पार से ब्रिजेवड़ी सोता मित्र वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। सर
0: वीरेंद्र जी, क्या हाल चाल है?
1: सर बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। सर बिहारी जी का आशीर्वाद है बंसी वाले का।
0: और परिवार में कैसे हैं सब?
1: सब कुशल मंगल है सर। गर्मी पड़ रही है और क्या करें, गर्मी के मारे बेचैन है दुनिया और बहुत परेशान है, क्या करें सर।
0: जी
1: गर्मी
0: जी
1: का मौसम चल रहा है।
0: गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा।
1: जी सर। और सर हमारी आकाशवाणी टीम ठीक है सर?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: सर जी मुझे फिल्म का नाम तो पता नहीं लेकिन गाने के बोल हैं, तू इतनी दूर क्यों है माँ, बता नाराज क्यों है माँ।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: आदरणीय दीक्षित सर जी को मेरा सादर प्रेम भरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और सर आप कैसे हो? सर
1: हम एकदम अच्छे हैं। जानना चाहते हैं कौन से श्रोता फोन लाइन पर हैं?
0: आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पार से।
1: जी जी, आप तो जाने पहचाने हैं, हमारे श्रोताओं के लिए जरूरी है आपका परिचय।
0: मेरे परिचय बता दिया सर। और हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: सभी लोग अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हाँ, हम भी आप लोगों की कृपा से साहब, कन्हैया जी की कृपा से हम भी साहब कुशल मंगल है। और आपकी भी हम स्वास्थ्य की कामना भगवान से यही करते हैं कि हमारे टीम लीडर हमारे दीक्षित सर ऐसे ही बनी रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और हमको आकाशवाणी के प्रोग्राम ऐसे ही सुनवाते रहे सर। इतनी मेहनत से आप जो है प्रोग्राम सुनवाते हैं, बनाते हैं, हम आपकी कद्र करते हैं और सराहना भी करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अब फरमाइश हो जाए।
0: गाने के बोल हैं साहब, आ लग जा गले दिल रुबा, ओ गुलाब की कली कहाँ रूठ के चली, तेरे कदमों में दिल है मेरा।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
1: राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार,
1: मैं सुरेश चंद शर्मा बोल रहा हूँ सहार से।
0: सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सर कैसी है आकाशवाणी टीम?
0: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: ठीक है सर, बढ़िया है, आनंद है, गर्मी का आनंद ले रहे हैं।
0: जी बहुत दिनों के बाद कॉल मिला है आपका।
1: हाँ जी सर, मिला दे रही है कि हमारे और भी श्रोता गण है, वे भी नंबर ले लेते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं आप तो।
1: हाँ जी,
0: परिवार में सब कुशल हैं आपके?
1: हाँ जी, सब कुशल मंगल है।
0: और काम कैसा चल रहा है आपका?
1: बढ़िया चल रहा है, परचून की दुकान करता हूँ सर।
0: जी जी, बताइए आज क्या सुनेंगे?
1: आज फिल्म का नाम है ब्रज भूमि।
0: जी,
1: और चारों धामों से निराला ब्रज धाम, चलो तो दर्शन कर ले।
0: सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जय श्री राधे
0: राधे राधे।

अभी तक आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

जहाँ श्रोताओं, दिन ब दिन बढ़ती गर्मी, धरती हुई परेशान, तपती धूप ने छीन लिया सबका सुख और चैन, सूख रहे हैं ताल तलैया, सूख रही हरियाली, प्यासे पशु पक्षी फिरते कैसी आई बदहाली, चलती लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल, घर से बाहर निकलना भी लगता अब मुश्किल हाल, पेड़ों की कटाई नहीं प्रकृति को रुलाया, प्रदूषण और धुएं से संकट को बढ़ाया, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को बचाएं, जल संरक्षण अपनाकर जीवन सुखमय बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बढ़ते हुए तापमान से जनजीवन अस्त व्यस्त इस विषय पर। आज के समय में बढ़ता तापमान पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। हर वर्ष गर्मी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां गर्मियों का मौसम सामान्य हुआ करता था, वहीं अब अत्यधिक गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इसका मानव जीवन पर तो प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ पशु पक्षियों, खेती और पर्यावरण पर भी साफ दिखाई देता है।

रहे हैं बढ़ता तापमान और उससे जनजीवन अस्त व्यस्त। बढ़ते तापमान का सबसे अधिक प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। तेज गर्मी के कारण लू लगना, डिहाइड्रेशन, थकान और अनेक बीमारियां फैल रही हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कई स्थानों पर पानी की कमी और इससे होने वाली समस्याओं से आम जनजीवन व्यस्त हो जाता है। साथ ही साथ ये एक गंभीर समस्या बन गई है। गर्मी बढ़ने से खेती और पशु पक्षियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। फसलें सूख जाती हैं और जल स्रोत कम होने लगते हैं। शहरों में बिजली की मांग और इसकी कटौती की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों की और अधिक परेशानी होती है। दोस्तों, इस विषय पर अभी और भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आइए सुनते हैं ये गीत पूर्णिमा और कुमार सानू की आवाज़ों में फिल्म कुली नंबर 1 से।

या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बढ़ता हुआ तापमान और उससे अस्त व्यस्त जनजीवन। इस समस्या से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए, साथ ही साथ प्रदूषण कम करने का भी प्रयास करना चाहिए। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। यदि अभी से सावधानी बरतेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। बढ़ते तापमान के कारण सबसे बड़ा जो संकट है वो पर्यावरण प्रदूषण है। पेड़ों की कटाई, कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं तथा बढ़ती जनसंख्या से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जंगलों की कमी और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यदि इसी विषय में हम बात करें तो इसका समाधान बस यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल संरक्षित करें और प्रदूषण को कम करने का प्रयास निरंतर जारी रखें।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए तापमान और उससे अस्त व्यस्त जनजीवन के विषय में। प्रकृति मानव की सबसे बड़ी मित्र है, किंतु जब मानव प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करता है, तब वही प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है। वर्तमान समय में बढ़ता तापमान इसी असंतुलन का परिणाम है। पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन अत्यंत प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी ने मानव जीवन को कठिन और अस्त व्यस्त बना दिया है। आज हर वर्ष गर्मी अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। सड़कों पर तपती धूप, गर्म हवाएं और सूखते जल स्रोत इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। इसका प्रमुख कारण पेड़ों की कटाई, बढ़ता प्रदूषण, औद्योगिकरण और ग्लोबल वार्मिंग है। मानव ने विकास की दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया भुगत रही है। बढ़ते तापमान का सबसे अधिक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। अधिक गर्मी के कारण लू लगना, डिहाइड्रेशन, थकान और अनेक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। और इससे सबसे ज्यादा छोटे बच्चे, बुजुर्ग तथा मजदूर वर्ग इस समस्या से प्रभावित होते हैं। कई बार अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। इसके अतिरिक्त जल संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। नदियां, तालाब और कुएं सूख रहे हैं, जिससे पीने के पानी की समस्या प्रतिदिन उत्पन्न हो रही है। खेती पर, पर्यावरण पर भी इसका बुरा और गहरा प्रभाव पड़ रहा है। फसलें सूख जाती हैं, उत्पादन घट जाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पशु पक्षी भी पानी और भोजन की कमी से परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ कई जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बढ़ती बिजली की मांग के कारण बिजली कटौती की समस्या भी बढ़ती जा रही है। यदि इस समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे बढ़ता तापमान और उससे अस्त व्यस्त जनजीवन। दोस्तों, कहा जा सकता है कि बढ़ता तापमान मानव जीवन के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। अत्यधिक गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, साथ ही साथ जल संकट, बीमारियां और पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर दी हैं। ऐसे समय में वर्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्षा धरती को ठंडक प्रदान करती है, साथ ही साथ पेड़ पौधों को जीवन देती है। वर्षा होने से पेड़ पौधों को जीवन तो मिलता ही है, साथ ही साथ नदियाँ, तालाबों और जल स्रोतों को भी ये भरती है। किसान पर वर्षा जो होती है, किसान उससे बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, क्योंकि अच्छी वर्षा से ही फसलें लहलहाती हैं और अन्न उत्पादन बढ़ता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधों का अधिक से अधिक प्लांटिंग करें, यानी कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे, वृक्षारोपण करे, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करे, तभी बढ़ते तापमान की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है और मानव जनजीवन सुखमय बन सकेगा।

या दोस्तों, बस चलते चलते यही कहना चाहेंगे, आओ मिलकर शपथ ये लें, धरती का सम्मान करेंगे, एक नहीं 100 वृक्ष लगाकर हर आंगन गुलजार करेंगे। जल की हर एक बूंद बचाएंगे, प्रदूषण को दूर करेंगे, मां प्रकृति की रक्षा करेंगे, भारत को भरपूर करेंगे। हरियाली का दीप जलाकर नव जीवन का गान करेंगे, बढ़ते तापमान को मिलकर हम सब नियंत्रण करेंगे।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे बढ़ते तापमान से जनजीवन अस्त व्यस्त इस विषय पर। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: गदर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत उत्तम सिंह का।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

आर्टिकल 15 इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे यसीर देसाई और आकांक्षा को। इस गीत को लिखा रश्मि विराग ने, संगीत संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे नेहा कक्कड़ और शेखर रवदियानी को। इस गीत को लिखा कुमार ने, संगीत विशाल शेखर का।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम बचना ए हसीनो। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 12:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम ब्रज लोकगीतों का। ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं ऋषि शर्मा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
4: दूसरा कोई मैच है क्या?
5: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
4: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
6: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी

0: दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों टीबी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपातकालीन चिकित्सा हीमोफीलिया प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारी इस सभा के शेष और सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी अपराह्न 1:15 पर हम आपको सुनवाएंगे झलकी हार जीत। लेखक होंगे हेमेंद्र दीक्षित, प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की होगी। अपराह्न 1:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह की और देवराज कृष्ण दीक्षित की होगी। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण करेंगे अपराह्न 2:30 पर। अपराह्न 3:00 होगा हमारी प्रथम सभा का समापन।

सांध्यकालीन सभा का शुभारंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय रहेंगे राष्ट्रमंडल दिवस और उर्दू शिक्षण के लिए और अधिक संसाधन।

ब्रज ग्रामीण, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:15 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा कृषि में एआई का प्रयोग, साथ ही साथ ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन भी आप सुन सकते हैं। संध्या वंदन, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:45 पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा उद्धव शतक सौपाठ। शाम सुहानी, श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत प्रसारित करेंगे रात्रि 8:00। एक ही फिल्म से, इस कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30। सुहानी तराने आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी तक आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सभा में और इस सभा के शेष कार्यक्रम का विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनितालो कार्यक्रम में हेलो सहेली कार्यक्रम यानी 25 मई को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में इस बार का विषय रहेगा गर्भाधान की समस्याएं, कारण और निवारण। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर सुरांगना अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25:30-135 और मोबाइल नंबर 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में गर्भाधान की समस्या, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 05-65 कोडावश लगाएं। कार्यक्रम का समय याद रखिए 1:15 से। और आइए अब सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर।
1: ने हेमेंद्र दीक्षित की लिखी झलकी हार जीत प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की है।

0: आ गए आप? बहुत देर से इंतजार कर रहे थे।
1: इंतजार करना तुम्हारा काम है, समझी?
0: ओफो, आज तुम फिर शराब पीकर आए हो घर में।
1: तुम तो नाहक ही मुझ पर शक करने लगी हो सुनीता। ऑफिस में जरूरी काम था। अच्छा, अब अंदर तो आने दो। तुम तो दरवाजे पर ही कोर्ट मार्शल करने लगी।
0: अच्छा आओ आओ, अंदर आओ। सुनो, संभल कर। ओफो, ये दरवाजा तो बंद कर देते।
1: खुला रहने दो, अच्छा लगता है।
0: रमेश, आज तनख्वाह मिली होगी? मैंने सोचा था कि आज हम लोग मार्केट हो आते शॉपिंग के लिए।
1: देखो, ऑफिस से थका मादा आया हूं, थोड़ा आराम तो कर लो।
0: तुम्हारी यही बात तो मुझे ठीक नहीं लगती। रोज शराब पीते हो तुम, और जब भी मैं किसी काम की कहती हूँ तुम टाल जाते हो, कुछ समझते ही नहीं।
1: समझू क्या खाक, बेवक्त की शहनाई किसी को अच्छी नहीं लगती। आते ही आते कप चाय पिलाने की जगह लेक्चर पिलाना चालू कर दिया।
0: अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें लेक्चर लगती हैं?
1: और नहीं तो क्या, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लेक्चर पी पी कर मुझे बदहज्म ना हो जाए।

0: कहना क्या चाहते हो रमेश? साफ साफ क्यों नहीं कहते?
1: मैं कहना चाहता हूँ।
2: भाई रमेश।
3: हाँ भाई रमेश, क्या कहना चाहते हो?
1: कहना क्या है अजीत, जिंदगी एक नासूर बन गई है।
0: उफ़, चुप भी करो रमेश, कुछ तो ख्याल करो। अरे अजीत भैया, तुम?
3: नमस्ते भाभी, चाय नहीं मिलेगी क्या?
0: अरे जरा बैठो तो सही अजीत, अभी चाय क्या कॉफी लाती हूँ, इन्हें भी बहुत देर हो गई ऑफिस से आए हुए।
1: अजीत, एक बात समझ में नहीं आई कि तेरे लिए तो चाय की जगह कॉफी और यहाँ पानी भी नहीं।
3: यह तो भाभी जी जाने, अपने देवर का ख्याल रखती हैं। तू क्यों चिढ़ता है?
1: चिढ़ने की बात नहीं है दोस्त, तू ऐसा किया कर कि मेरे ऑफिस से लौटने के समय रोज मेरे घर आ जाया कर, तेरे कारण मुझे भी चाय मिल जाएगी।
0: कौन आया जाया करेगी? क्यों जी, तुम्हें मेरी बातें लेक्चर लगती हैं? क्यों तुम बदहजमे की बातें करते हो? अजीत भैया, तुम बतलाओ कौन है वो मूंजली जो आया जाया करेगी?
1: अरे भगवान, तुम बेकार की बात मत किया करो, ना कोई आएगी ना कोई जाएगी।
3: अरे भाभी, ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से इनको भी चाय मिल जाया करेगी।
0: देखो रमेश, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे?
3: भाभी जी छोड़ो भी, आप दोनों की बातों में काफी ठंडी हो जाएगी। अच्छा भाई रमेश, और सुनाओ, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
1: ऑफिस के मत पूछ यार, वहां के महाभारत को तो मैं आसानी से जीत लेता हूँ, पर घर के महाभारत में मेरे हथियार गिर जाते हैं।
0: अच्छा, तो मैं आपसे महाभारत करती हूँ, इसका मतलब यह हुआ कि मैं तो लड़का हूँ, ले आओ किसी और को जो महाभारत नहीं रास रचाए और रोज शराब पिलाए तुम्हें, मैं तो चली मायके।
3: अरे भाभी सुनो तो सही।
1: जाएगी नहीं यार, ऐसे ही ढोंग दिखलाती है, डराती है कहीं मैं दूसरी न ले आऊं।
0: अच्छा, तो यह इरादा है, यह भी शौक से पूरा कर लो, ले आओ किसी और को, मैं तो जा रही हूँ। रोज रोज शराब पी के रहते हैं, न घर का ख्याल है न किसी चीज का।
3: अरे रमेश, यार भाभी जा रही है और तूने रोक नहीं रहा, देख वो चली गई।
1: अरे सुनीता तो सचमुच चली गई। चलो अच्छा ही हुआ, कुछ दिन तो मौज मस्ती मार लेंगे, आफत तो टली।
3: रमेश मैं चलता हूँ, होश आए तो सोचना जरूर दोस्त, जिंदगी के इतने खूबसूरत रिश्ते को शराब की खातिर तबाह करना ठीक नहीं।

0: सावित्री, ओ सावित्री,
1: क्या है?
0: बड़ी देर हो गई है, बैठी नहीं मिलेगी क्या? तुम जो भी काम करती हो देर से ही करती हो।
1: कितनी भी जल्दी करूं देर हो ही जाती है। और देखो, घर का सारा काम ही तो मुझे करना पड़ता है।
0: अब बातें ही बनाती रहोगी या चाय भी लेकर आओगी?
1: लीजिए महाराज, चाय हाजिर है।
0: अब चोचलेबाजी छोड़, घर का काम तू नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगा? ज्यादा परेशानी थी तो एक तो नौकर भी भेज दिए होते तेरे बाप ने।
1: क्या तुम तो मुझे सिर्फ नौकरानी ही समझते हो? दिन भर जुटी रहती हूँ तुम्हारे घर में, पर तुम कभी प्यार से दो शब्द नहीं बोल सकते। नौकर भी प्यार का भूखा होता है, उसे भी प्यार ना मिले तो वो भी नौकरी छोड़कर चला जाता है। और फिर मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ।
0: जैसे नौकर नौकरी छोड़कर चला जाता है, ऐसे ही तू भी मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती?
1: क्या
0: जहां तू नौकरानी नहीं महारानी बने, मेरी जान क्यों खा रही है? खुद पर तो कोई काम होता नहीं, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, समझी?
1: तुम घर में रहो या बाहर, आज तुम्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा।
0: किस बात का जवाब मांग रही है तू? यहां पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए कोई कमी नहीं है तेरे लिए, अब और क्या चाहिए तुझे? फिर किस बात का जवाब चाहिए? मैं अपना फर्ज पूरी तरह निभा रहा हूं।
1: प्रकाश, मेरा नाम सावित्री है और मैंने भी अपने नाम की तरह घर को चलाने में अपनी ओर से पूरा फर्ज निभाया।
0: तू सावित्री होने का ढोंग दिखा रही है? अभी मैं मरा नहीं हूं जो तू सावित्री बनी रहे। तू चाहती है कि मैं मर जाऊं और तू सती होकर सावित्री बन जाए?
1: कैसी बातें कर रहे हो प्रकाश? मरे तुम्हारे दुश्मन, मेरी भी उम्र तुम्हें ही लग जाए, मैं सब दुख सह लूंगी, लेकिन भगवान के वास्ते ऐसा ना कर।

0: ये चोचलेबाजी छोड़, बड़ी आई सावित्री बनने वाली, ज्यादा दुख है तो किसी सत्यवान को तलाश ले, चली जा उसी के पास।
1: क्या कह रहे हो प्रकाश, तुम तो औरत को सिर्फ बिस्तर गर्म करने की एक चीज समझते हो ना, और जब ये देखते हो कि उसकी जवानी ढलने लगी है तो दूसरी ओर भटकने लगते हो। लेकिन औरत कोई बिस्तर गर्म करने की चीज नहीं मिस्टर प्रकाश, अब भी संभल जाओ।
0: सुन, मुझे भाषण सुनने का शौक नहीं है सावित्री, अब मुझे इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं।
1: मेरी कोई जरूरत नहीं है तो ठीक है प्रकाश, औरत को कमजोर मत समझना, वो जितनी कोमल होती है ना उससे कहीं ज्यादा कठोर भी। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है अभी।
0: मुझे धमकी दे रही है, डरा रही है। औरत मर्द को डराना चाहती है, झुकाना चाहती है। मर्द आखिर मर्द ही होता है समझे, वो ना तो कभी झुक सकता है और ना ही झुकेगा। जा निकल जा यहां से।
1: ये तुम नहीं प्रकाश, तुम्हारी शराब बोल रही है। लगता है अभी तक रात की उतरी नहीं। जब भी रात में तुम शराब पीकर आते हो ना तो सुबह कोहराम मचाना भूलते नहीं। मैं जा रही हूं मिस्टर प्रकाश, और अब मैं नहीं तुम मेरे पास आओगे, समझे?
0: हाँ हाँ समझ गया, रोकता कौन है तुझे, जा।

0: कौन? अरे सुनीता बहन, रमेश नहीं आया?
1: अब नहीं आएगा। समझता क्या है अपने आप को? समझता क्या है? मैं कोई उसकी जरखरीद गुलाम हूँ जो हुक्म पर चलती रहूँ और नौकरानी की तरह उसके घर का काम करती रहूँ?
0: तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहन।
1: भैया, भाभी कहाँ है? भाभी
0: भाभी, मैंने निकाल दिया उसे। वो औरत होकर मुझे अपनी शक्ति का एहसास करा रही थी।
1: भैया,
0: कहती थी कि तुम मुझे झुका नहीं सकते।
1: भैया, आखिर वह आपकी पत्नी है। अरे तुम झुकाने की बातें करते हो, लेकिन भैया तुम भूल गए कि औरत जब अपने पिता का घर छोड़ती है तो वह मान सम्मान सब कुछ छोड़कर सिर्फ पति पर ही आश्रित होती है। तुमने तो भाभी को निकाल दिया, मगर यह नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में भाभी का है कौन?
0: बहन, कल मैं वैसे भी देर रात शराब के नशे में चूर था, और सुबह उठते ही तेरी भाभी से उल्टी सीधी बातें हो गई। मगर मैं क्या करूं, मैंने तो यूं ही उसको डांट फटकार दिया था।
1: लेकिन भैया, अब तो तुम्हारा नशा उतर गया है। भाभी ने ठीक ही तो कहा, वे आपकी सेवा करे, आपकी उल्टी सीधी बातें भी सुने। अरे भैया, ऐसी देवी जैसी औरत के सामने इंसान तो क्या देवता भी झुक जाते हैं। और आपने अपने ही घर की लक्ष्मी को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। यह सब तुम्हारी शराब का दोष है भैया, तुम्हें शराब छोड़ना ही होगा।
0: तू शायद ठीक ही कहती है। जिस देवी की मुझे पूजा करनी चाहिए थी, मैंने उसे ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया। मैं क्या करूं बहन? अब मैं उससे माफी मांग लूंगा, अजीत और पिताजी से भी माफी मांगूंगा, और कहूंगा कि मुझे मेरी लक्ष्मी वापस दे दो।
1: ओह मेरे अच्छे भैया,

0: अजीत भैया, अजीत भैया दरवाजा खोलो, पता नहीं अंदर क्या कर रहे हो।
1: अरे सावित्री बहन, तू क्या बात हो गई? तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है?
0: कुछ नहीं भैया, सब ठीक है।
1: नहीं नहीं, तुम मुझसे छुपा रही है, बता क्या बात है? मैं जानता हूँ कि मेरी बहन कोई गलती नहीं कर सकती, गलती जरूर प्रकाश की ही होगी, मैं जानता हूँ उसकी आदत को।
0: नहीं भैया, गलती उनकी नहीं, मर्द गलती करते ही नहीं है क्योंकि वे मर्द है ना।
1: जरूर उसने कोई ऐसी बात कही होगी जिससे तेरा दिल टूट गया है। अब तो कुछ दिन यहीं ठहर, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और प्रकाश का गुस्सा भी शांत हो जाएगा।

0: कुछ दिन ही क्यों भैया, मैं तो फैसला करके आई हूँ कि अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। वे मुझे मार सकते हैं पर झुका नहीं सकते। औरत को सिर्फ प्यार से ही झुकाया जा सकता है भैया।
1: लगता है शायद पापा आ गए।
2: अजीत बेटे, कौन आया है? अरे वाह, हमारी बिटिया आई है। सावित्री बेटी, ठीक तो हो? प्रकाश नहीं आया क्या?
0: उनका नाम मत लो पापा।
2: बेटी क्या बात है, जो हमेशा हंसती बोलती रहती थी, आज इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ बोल।
0: कोई बात नहीं पापा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है।
2: बेटी, तेरी खुशी के लिए मैं सब कुछ नौछावर कर सकता हूँ। जब से तुम्हारी माँ गुजरी है, मैंने कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। तुम दोनों का बाप होते हुए भी मैं तुम्हारी माँ भी हूँ बेटे।
0: पापा, मैं ही कसूरवार हूँ, मुझे माफ कर दो पापा।
2: बेटी, तेरी आंखों में आंसू? नहीं बेटी, नहीं, तेरे आंसू इतने सस्ते नहीं हैं। जिसके कारण ये आंसू बहे हैं, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
0: नहीं पापा, ये सब मेरे भाग्य का ही दोष है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, भाग्य का सहारा तो कमजोर लिया करते हैं बेटी, तो हिम्मत से काम ले।
1: सावित्री, पापा शायद ठीक ही कहते हैं। तुम तो जानती हो पापा हर चीज सहन कर सकते हैं, पर हमारी आंखों में दुख के डोरे नहीं देख सकते। अरे सुनीता भाभी, तुम?
3: नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। भाभी, अब आप अपने घर चलिए। आपको घर से निकाल कर भैया बहुत पछता रहे हैं। अब वे अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं और भैया भी आ रहे हैं पीछे।
1: वह क्या अपनी गलती का एहसास करेगा? हरगिज नहीं। जब देखो शराब पीकर मर्दानगी दिखाता रहता है। सावित्री को घर से निकाल कर शायद वह सोच रहा होगा कि इसके लिए कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, लेकिन यह भूल गया कि अभी उसका भाई जिंदा है।
4: बस बस अजीत, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी करतूत पर खुद शर्मिंदा हूँ। मैं सावित्री को लेने आया हूँ, कहाँ है वो?
1: तुम्हारा नाम तो प्रकाश जरूर है, लेकिन तुम अंधकार के ऐसे ढेर हो जिसके भीतर कोई प्रकाश नहीं। माफी मुझसे क्या मांगते हो? माफी तो इस देवी से मांगो जिसने तुम्हारी हर बात सही पर आंसू की एक बूंद भी अपने भाई के सामने नहीं गिरने दी।
4: मैं शराब के नशे में पागल हो गया था। अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ, कहना काफी नहीं है अजीत?
1: सावित्री, बहन अब इन्हें माफ भी कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता बहन। जाओ अपने घर जाकर सुख से रहो।
5: अजीत!
1: अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे?
5: मैं बाहर से सब कुछ सुन रहा था और यह भी मालूम है कि सुनीता भी यहाँ आई हुई है। जो कुछ भी हुआ अजीत, उसे भूल जाओ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे भी मेरी सुनीता वापस दिला दो।
2: ओह, तो तुम भी आ गए ठिकाने पर। शराब पीकर अपनी बीवी से मुक्ति पाना चाहते थे।
4: अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए।
2: जाओ,
4: माफ कर दीजिए बाबूजी।
2: जाओ, माफ किया।
3: आओ प्रकाश, चलते हैं। चलो रमेश।
6: आप सुन रहे थे हेमेंद्र दीक्षित की लिखी झलकी हार जीत। इसमें भाग ले रहे थे सुरेंद्र गोयल, वीणा शर्मा, हर्ष भाटिया और राधा बिहारी गोस्वामी। प्रस्तुति यतीन्द्र चतुर्वेदी की थी।

FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की है।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं ओपी सिंह साहब
1: जी। नमस्कार देवराज जी, और कार्यक्रम का ये आज का पहला जी पड़ाव है। इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। ये कार्यक्रम तो बहुत पुराना है, पहले इसको हम करते थे आपके

0: पत्र आपके फोन के नाम से, लेकिन अभी पत्र चूंकि भौतिक रूप में नहीं आते
1: नहीं
0: हैं,
1: आते
0: फिजिकली
1: हैं।
0: नहीं आ रहे, तो फोन से ही बात होगी। तो इसको नए उसके साथ के श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, और
1: हमारे साथ श्रोता जुड़ भी गए हैं, फोन कॉल्स आना
0: जी
1: शुरू भी हो
0: जी
1: गए
0: जी
1: हैं।
0: जी तो उनको लेते हैं फोन कॉल्स को।
1: जी हेलो,
2: नमस्ते जी, मैं रामेश्वर चौधरी बोल रहा हूँ सर, जिरौली सासन से।
1: स्वागत है।

0: सर जिरौली सासन से।
1: स्वागत है चौधरी साहब आपका।
0: सबसे पहले तो सर इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी आप अपनी बात रखें और प्रतिक्रियाएं दें कार्यक्रमों के बारे में। हमारे साथ हैं ओपी सिंह साहब।
0: जी नमस्कार साहब।
2: नमस्कार रामेश्वर जी, आपका जो कॉल लग रहा है श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ इस कार्यक्रम का नाम हम रख रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है क्योंकि पहले जिस कार्यक्रम का नाम था आपके पत्र आपके फोन, पत्र अब भौतिक रूप में नहीं आ रहे तो फोन कॉल्स के साथ हम श्रोताओं की बात किया करेंगे, तो यही अभी फिलहाल इस कार्यक्रम का नाम है। बाकी आप लोग जब कुछ बताएंगे या कुछ सुझाव आएंगे श्रोताओं की बात फोन कॉल के साथ में आपका हम स्वागत करते हैं। रामेश्वर जी बताइए हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं।
0: सर आपके सारे प्रोग्राम में सुनता हूँ और बहुत ही पुराना श्रोता हूँ मैं। सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा कि जो गीत बात और एसएमएस चलता है ना सर 12 बजे से,
2: जी जी जी,
0: ये प्रोग्राम या तो एक घंटे का हो जाए या फिर हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम मतलब दोपहर में एक घंटे का फरमाइशी प्रोग्राम हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा सर।
1: जी
2: चलिए आपकी ये पहला आया है, इस पर कुछ जो कुछ हो सकेगा क्योंकि काम तो श्रोताओं के इच्छाओं के आधार पर ही करना है, उनके सुझावों के आधार पर रखना है।
0: जी तो जी जी। और एक बात और कहना चाहूंगा सर, रात्रिकालीन सभा में जो सुहाने तराने प्रोग्राम आता है सभा 9 से,
2: जी
0: मैं चाह रहा हूँ कि उसका समय कुछ बढ़ जाए 10 बजे के आसपास अगर हो सके तो, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा सुनता हूँ सर मैं आपको बता दूँ।
2: जी जी एक्चुअली रामेश्वर जी आपको बताएं कि शाम की सभा में बहुत सारे कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से आने लगे हैं और चूंकि ये कभी एक नीतिगत निर्णय है तो अभी जिन सीमाओं में हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी सुझाव है आपका तो हम इसको नोट कर लेते हैं, कभी परिवर्तन होगा तो उसमें जरूर देखेंगे उसमें।
0: जी जी जरूर देखिएगा। बाकी प्रोग्राम सर आपके अच्छे लगते हैं मुझे और रश्मि शर्मा द्वारा प्रस्तुत हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है।
2: चलिए चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ने फोन किया आपने कॉल किया और आप हमसे जुड़े।
1: नमस्कार जी सिंह साहब।
2: जी देवराज जी आपका स्वागत इस कार्यक्रम में।
1: एक फोन और आ रहा है ले लेते हैं।
2: चलिए बात कर लेते हैं।
3: हेलो आकाशवाणी मथुरा का।
2: जी स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं शुभ नाम बताइए।
3: सर मैं ब्रज रेडियो श्रोता में यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस्पार से सर।
1: स्वागत याद है यादराम जी।
2: जी क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे में।
3: मैं सर कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँगा कि हमें आपके आकाशवाणी के कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और अच्छे लगते हैं और जो है हेलो आकाशवाणी ये सबसे अच्छा प्रोग्राम लगता है।
2: चलिए इसके तो सब चाहते हैं और ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो ये तो सबको ही अच्छा लगता है। और कार्यक्रम जिनमें आप कुछ चाहें, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे भी हैं जो यूटिलिटी बेस है, यूटिलिटी मतलब जैसे हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं।
3: जब सुबह जो है चलता है, सुबह 6 बजे से साथ चलता है तो उसमें सारी बातें आती है और शाम को भी 6:15 बजे किसानों की भी बातें आती हैं, पर्यावरण के भी बारे में बातें आती हैं,
2: जी जी
3: और
2: जी।
3: भी और फिर फिल्मी गाने भी आते हैं वो भी अच्छे लगते हैं साहब। सर ऐसा है कि एक तो इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे सर, जब प्रोग्राम करे तो इसकी आवाज बढ़ा दिया करे सर थोड़ा।
2: चलिए ठीक है ठीक, लेवल का ध्यान रखें।
3: जी हाँ। और सर जो है आपके हमारे जो है जो उद्घोषक महोदय जैसे दीक्षित जी हैं, सारस्वत जी हैं, रश्मि दीदी हैं, इनकी आवाज और इतना इनका कंटेंट बहुत ही सराहनीय है।
2: ये तो आपके
3: अच्छा लगता है सर,
2: ये तो आपके अपने लोग हैं, आपका अपनापन बोल रहा है क्योंकि आप इनको अपना मानते हैं, बाकी और लोग भी अच्छा कर रहे हैं उनकी भी तारीफ करते रहिए।
3: और हमारे अधिकारी भी बहुत अच्छे बेचारे।
2: नहीं अधिकारियों को छोड़िए लेकिन जो ऑन एयर अच्छा कर रहे वो भी उनके भी नाम लिया करिए कभी।
1: यादराम जी अब कार्यक्रमों को सुनकर उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं ये जरूर रखिएगा।
3: ऐसा सर देखो हम तो सुनते ही हैं सर, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। देखिए
1: हमारे लिए ये जरूरी है कि आप हमें बताएं कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे हाँ, कार्यक्रमों में क्या कमी रह गई है ताकि हमें सुधार का मौका मिल सके।
3: आपका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है।
2: यादराम जी आपने फोन किया, अपनी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: राधे राधे।
1: हेलो
4: आदरणीय दीक्षित जी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ओपी सिंह साहब।
4: जी बिल्कुल हम जानते थे हमारे ओपी सर जी आने वाले थे आज।
2: जी जी जी प्रणाम कर रहे हैं आपको, कहिए शुभ नाम बताइए सबसे पहले श्रोताओं को।
4: सबसे पहले तो दो लाइनें कहना चाहेंगे उसके बाद परिचय भी देंगे आपको।
2: स्वागत है आपका।
4: आया तो सही रहम श्रोताओं पर, सुनी तो सही फरियाद, इस कार्यक्रम को दोबारा

0: शुरू करने के लिए आकाशवाणी मथुरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए चलिए, आपने कुछ काव्यात्मक अंदाज में कुछ उसमें बात रखी, धन्यवाद आपका भी कि आप जैसे ही हमारा कार्यक्रम ये शुरू हुआ कि आप जुड़े, आप प्रतिक्रिया दे रहे।
2: लवण्या साहब, अब अपनी बात रखें, अपनी सुझाव है जो शिकायतें हैं वो जरूर रखें।
0: जी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवण्या बोल रहा हूँ सर।
1: जी लवण्या जी, आपकी आवाज को तो हम समझते हैं।
0: जी, सबसे पहला मेरा सुझाव ये है सर, क्योंकि देखिए आकाशवाणी मथुरा अब दिनों दिन पॉपुलर होता जा रहा है, तो हमें यहाँ थोड़ी सी सुनने में इसको दिक्कत होती है। हमें चार्जर पिन लगा करके कार्यक्रम सुनने पड़ते हैं, और जब हम चार्जर पिन अलग निकाल देते हैं तो फिर हमें कार्यक्रम सुनाई नहीं देते।
1: ठीक है ठीक है,
0: तो आपसे गुजारिश है कि इसकी जो रेंज है वो थोड़ी बढ़ा दी जाए, ताकि श्रोताओं को, बहुत सारे श्रोता जो दूसरे प्रांतों से भी हैं उनकी भी यही शिकायत के सर हमें 4 साल से यानी 2023 से आपका प्रसारण नहीं मिल रहा।
1: जी जी, तो हम देखिए इस आपकी इस बात को कि थोड़ा रेंज बढ़ाएं, थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं, अपनी जो हमारी टेक्निकल टीम है उसके जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, हम उनसे बात कर लेंगे, और जितना संभव हो सकेगा कि इस जो ट्रांसमीटर की जो क्षमता है, क्योंकि लिमिट में ही काम कर रहा है, और तकनीकी क्षमता के अनुसार जितना हो सकेगा वो हमको आकाशवाणी मथुरा के
0: बाद। मेरा ये है, दूसरा सुझाव मेरा ये है कि हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में कई बार रिंग जाती है लेकिन सर फोन रिसीव नहीं होता है, तो ये समस्या आप जरूर दूर कराएं, ये बहुत पुरानी समस्या है।
1: देवराज जी बताएंगे।
2: जी लवण्या साहब, देखिए ये समस्या हमारे यहाँ से नहीं है, जहाँ तक हम समझते हैं ये समस्या एक्सचेंज की तरफ से आती है। जो हमारे श्रोता फोन करते हैं, भले ही हमारा फोन एंगेज होता है लेकिन श्रोताओं को घंटी सुनाई देती है।
0: जी सर, तो इसके लिए आप एक्सचेंज से संपर्क
1: चलिए तो वो आदमी कर लेंगे, और अब ये कार्यक्रम अगर शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर आपका फीडबैक आता रहेगा, और इसको हम जहाँ जहाँ आपकी चीजों का समाधान मिलेगा वहाँ
0: तक आकाशवाणी मथुरा के बहुत पुराने श्रोता हैं, जब चिट्ठियाँ जाया करती थी तब से जुड़े हैं।
1: जी जी जी,
0: तो अगर हम शिकायत भी करेंगे तो
1: नहीं, बिल्कुल आपका स्वागत है, श्रोताओं की शिकायत हमारे लिए एक तरह से
2: मार्गदर्शन का काम करती है। जी
1: जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लवण्या जी, आप जुड़े, फोन किया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार,
3: मैं भजनलाल बोल रहा हूँ कुमार से सर।
2: स्वागत है भजनलाल जी, अपनी बात रखें।
3: बात ये है सर, पहले जो गाने आते हैं पुराने प्रोग्राम में,
2: जी
3: बुरे पिछड़े गाने,
2: जी
3: उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि गाने का नाम नहीं बताया जाए कौन सी फिल्म का है।
2: जी,
3: अगर समाचार आ गए उसके बाद में तो गाना के नाम पहले बता दिया जाए सर के
1: पे। चलिए ध्यान रखेंगे कि हमारे उद्घोषक महोदय आपको पूरा फिल्म और गायक का नाम कम से कम बता दें।
2: उद्घोषणा है वो पहले हो जाए, गाने के बारे में जानकारी श्रोताओं को पहले दी जाए, बाद में गाना सुनवाया जाए, ये कहना चाहते हैं आप?
3: हाँ सर।
1: चलिए ठीक है ठीक है, भजनलाल जी आप जुड़े, आपने जानकारी दी, आपने सुझाव दिया, इसके लिए धन्यवाद आपको।
3: नमस्कार सर।
2: नमस्कार। श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार
4: जी। नमस्कार आदरणीय दीक्षित जी, हमारी तरफ से भी हमारा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
1: कैसे हैं महेंद्र सिंह राणा जी?
4: जी नमस्कार सर,
1: प्रणाम कर रहे हैं आपको।
4: जी आपकी आवाज से ही पहचान लेते हैं सर हम आपको।
1: चलिए प्रोग्राम कैसे लग रहा है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, कुछ सुझाव दीजिए।
4: महोदय सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम कुछ दिनों से बंद जा रहा था।
1: हाँ हाँ, कुछ दिनों से
4: आपने पुनः शुरू करके ये बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि जिस समय आप अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं तो उस समय आप ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी तरफ से कोई त्रुटि न रह जाए जिससे कि श्रोता शिकायत करें।
2: जी,
4: लेकिन श्रोताओं का तो काम है, अगर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो वो प्रशंसा भी करेंगे, अगर जहाँ कोई कमी दिखाई दे रही है तो वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप अपने प्रोग्रामों में इस तरह का सुधार लाइए।
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और ये आपका हक बनता है कि आप प्रोग्रामों पे अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने सुझाव दें, और जो क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो श्रोता हमसे क्या चाहते हैं, हमें कैसे पता लगेगा, तो अच्छा करने के लिए प्रेरणा आपके सुझाव से और आपकी जानकारी से ही हमें मिलती है।
4: सर अगर श्रोता आपको प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो आप अपने कार्यक्रमों में सुधार कैसे लाएंगे, उनको उनके अनुकूल बनाएंगे कैसे?
2: जी,
4: तो देखिए जी मेरा कहना ये है कि वैसे तो आकाशवाणी मथुरा से प्रसारित लगभग सभी कार्यक्रम काबिले तारीफ हैं, लेकिन इस समय हमारे ऑफिसर नए नए विशेषज्ञों को बुलाकर जो भेंट करते हैं और हम श्रोताओं तक नई नई जानकारी पहुँचाते हैं, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से

0: ओपी सर को अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। जी नहीं, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, पूरी आकाशवाणी की टीम इसमें लगी हुई है। कुछ लोग पर्दे के पीछे हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे हैं, कुछ का नाम सुनाई दे रहा है, कुछ की जो है बाणी सुनाई दे रही है, लेकिन पूरी आकाशवाणी मथुरा की टीम का ये वो है, जो भी श्रोताओं तक पहुँच रहा है वो हमारी टीम का हिस्सा है।
0: वैसे तो पर्दे पे तो आप ही दिखाई देते हैं, लेकिन समस्त टीम के सहयोग से ये काम होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो और हमसे चाहते हैं
0: निवेदन करूंगा सर आपसे
1: जी।
0: वैसे तो सप्ते में 3 दिन ये हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, लेकिन श्रोताओं की बेहद मांग पर जिस तरह आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, इसी प्रकार अगर आधा घंटा से लेके इस कार्यक्रम का समय बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया जाए तो आपकी विशेष और बड़ी मेहरबानी होगी।
1: आप हेलो आकाशवाणी की बात कर रहे हैं?
0: जी जी जी।
1: चलिए कुछ ऐसा बन पड़ेगा तो जरूर, बाकी आधा घंटे कार्यक्रम आ रहा है उसका आनंद तो लेते ही रहिए, प्रतिदिन है ये, हमें अच्छा लगता है कि कम से कम आधा घंटे रोजाना तो आपकी सेवा में, चाहे वो देवराज जी हों, चाहे संजय भाई हों, चाहे अपनी रश्मि या कोई अन्य जो का लोग आते हैं, वो भी आप आनंद तो लेते रहिए। कुछ हो पड़ेगा तो जरूर कोशिश करेंगे कि इसका
2: भविष्य में संभव हुआ तो ये आपकी जो मांग है इसको अवश्य पूरा किया जाएगा।
0: महोदय, मैं इस केंद्र के जो हमारे ऊपर बैठे हुए उच्च अधिकारी हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं उनसे ये नम्र निवेदन कर रहा हूँ तो इस विषय में थोड़ा ध्यान दें।
1: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
2: आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब
0: जी। नमस्कार सर।
2: नमस्कार। तो सिंह साहब, आज के कार्यक्रम में हमारे काफी श्रोता जुड़े और अपनी बातें उन्होंने रखी, तो उम्मीद करते हैं भविष्य में भी इसी तरह से हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहेंगे और अपनी बातें रखते रहेंगे ताकि हम अपने कार्यक्रमों में और सुधार ला सकेंगे।
1: जी जी। और जितने कम शॉर्ट नोटिस पे हम कहेंगे, कम समय की सूचना के बाद
2: जी,
1: कई सारे हमारे पुराने श्रोता जुड़े, कुछ नए श्रोता जुड़े, तो भविष्य में ये क्रम बना रहेगा, लोगों के अपने कॉल्स आते रहेंगे, सुझाव आते रहेंगे, जानकारी हम तक आती रहेगी, और जो श्रोताओं की बात है फोन कॉल्स के साथ जो आपने इस कार्यक्रम का टाइटल रखा है वो सार्थक होती रहेगी, क्योंकि उनके सुझाव और जानकारी पर जब कार्यक्रम बनेंगे तो निश्चित तौर पे वो सार्थकता कार्यक्रमों की ज्यादा बन
2: पड़ेगी। और श्रोताओं की जो सुझाव हैं वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं, बहुत कीमती हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रमों को उनके अनुरूप बना सकते हैं।
1: जी जी। तो अभी समय चूंकि इजाजत नहीं दे रहा है
2: जी
1: कि आगे बढ़े, लेकिन एक बार फोन आप बता दीजिए नंबर किस पर हमारे नए श्रोता जुड़े हैं इसमें।
2: श्रोताओं, हमारा नंबर है 25 30 135, और मथुरा से बाहर के जो श्रोता हैं वो हमें 0565 STD कोड लगाकर फोन कर सकते हैं। फोन करने का समय और दिन है शुक्रवार के दिन 12:30 से।
1: जी, तो आपका इंतजार रहेगा। 2530 135 मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगा ले, इस पर आप प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत ले।
2: बिल्कुल, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

आपने सुना ये गीत अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार और अमाल मलिक की आवाजों में फिल्म सरबजीत से। इस गीत को लिखा रश्मि बिराग ने, संगीत अमाल मलिक का।

हाउसफुल मूवी से अभी आपने सुना ये गीत। आवाज़ें मिका, सुनिधि चौहान और साजिद खान की थीं। गीत रचना समीर की, संगीत साजिद वाजिद का।

0: श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म किल दिल से। आवाजें अरिजीत सिंह और निहिरा जोशी की थी। गीत रचना गुलजार की, संगीत शंकर एहसान लॉय का। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: शुरू हो रहा है, इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन।

0: ninth session on core Philippe Chatrier, second seed and 2024 finalist Alexander Zverev, and seventh seed Taylor Fritz are also among the key men's singles players in action on the opening day. World number one Yannick Sinner will aim for his maiden French Open crown after finishing runner-up to Carlos Alcaraz last year. He will be in action tomorrow. In the women's draw, Coco Gauff will head into the French Open as a defending champion. Meanwhile, world number one Aryna Sabalenka will be aiming to win a first-ever French Open title, having come up second best to Coco Gauff in the final last year. India will also have representation in the men's doubles, with top-ranked Indian player Yuki Bhambri partnering New Zealand's Michael Venus, while N. Sriram Balaji teams up with Brazil's Marcelo de Molina. In IPL cricket, the Super Sunday double header will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Mumbai Indians will take on Rajasthan Royals at the Wankhede Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. For Rajasthan Royals, it is a must-win game in the pursuit of a playoff berth. For Mumbai Indians, it was one of the most disappointing seasons in the franchise, as they've already been eliminated from IPL 2026. In another clash of the day, Kolkata Knight Riders will face Delhi Capitals at Eden Gardens in Kolkata. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Last night, riding on an unbeaten 101 runs by skipper Shreyas Iyer, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets at the Ikana Cricket Stadium in Lucknow. Chasing a target of 197 runs set by Lucknow Super Giants, Punjab Kings scored 200 for 3 in 18 overs. Prav Simran Singh made 69 runs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and United States reaffirm strength of strategic partnership between the two countries. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar calls for early trade deal, stresses on diversified energy supplies for the country. U.S. Secretary of State Marco Rubio describes India as one of the United States' most important strategic partners. BJP candidate Devanshu Panda secures massive lead in West Bengal's Folta Assembly constituency re-polling. Government advises all Indian citizens to avoid non-essential travel to Congo, Uganda and South Sudan in view of Ebola outbreak. 24 people killed in a blast in a railway track in Quetta in Pakistan's Balochistan province. And in tennis, French Open Grand Slam begins today in Paris. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जट

0: विभिन्न वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुले। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
1: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एच 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण

0: नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेहुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना

0: पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

जसलीन रॉयल और बी पराग को अभी आप सुना। फिल्म का नाम शेरशाह, आवाज बी पराग और जसलीन रॉयल की थी, संगीत तनिष बागची का, गीत रचना अन्विता दत्त की।

जावेद अली और कैलाश खेर की आवाजों में आपने सुना ये गीत फिल्म दिल्ली 6 से। इस गीत को लिखा प्रशून जोशी ने, संगीत AR रहमान का।

कार्यक्रम के अंत में आपने सुना श्रेया घोषाल, वैशाली और साथियों को फिल्म बाजीराव मस्तानी में। गीत रचना सिद्धार्थ गरिमा की थी, संगीत संजय लीला भंसाली का। और इसी के साथ सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्या 5:30 पर अपनी द्वितीय सभा में आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 5:30 हो गए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत में राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में। यह दिन 24 मई को मनाया जाता है। यह दिन उन देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। यह दिवस मूल रूप से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन 24 मई 1819 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले इसे एम्पायर डे या साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था, जबकि भारत समेत कुछ देश 24 मई को यह दिवस मनाते हैं जो महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन है। अधिकांश राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल देश इसे मार्च के दूसरे सोमवार को भी मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता, भाईचारे, मानवता और शांति को बढ़ावा देना है। ये तो बात हुई भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस के बारे में, और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

जानकारी बढ़ाने के लिए जैसे कंप्यूटर हैं और डिजिटल अनेकों तरीके की पाठ्य पुस्तकें हैं, ये सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। क्योंकि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, जो उर्दू शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी आम बच्चों की तरह अपना ज्ञान बढ़ाएं, कंप्यूटर में भी अपना रोचकता प्रदान करें और विभिन्न विधियों में, विभिन्न वाद विवादों में, विभिन्न जानकारियों के साथ अपने को सहभागिता करें। अभ्यास के लिए ऑनलाइन शब्दकोश पॉडकास्ट के व्याकरण की किताबों की प्रमुख संसाधनों के रूप में शामिल किया जा रहा है। उर्दू भाषा सिखाने और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई प्रभावी और उपयोगी संसाधनों की सूची दी गई है। उर्दू सीखने वालों, हमारे बच्चों को आज के हिसाब से उन्हें क्या आवश्यकता है, उसके साथ उनकी जो नॉलेज है उसको अपडेट किया जा रहा है। उनको अनेकों ऐसे काम जो रोजगार परक हैं सिखाए जा रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। उनकी पुस्तकों में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद NCPUL, आप शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उर्दू सबके लिए आइए उर्दू सीखें, इस विषय को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा अनेकों सुविधाएं दी जा रही हैं। जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उर्दू का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो आज के बच्चों के साथ बराबरी कैसे आए, उस विषय पर सरकार का ध्यान जा रहा है और उन बच्चों के लिए भी वही सब सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जो आम बच्चों के लिए आम स्कूलों में दी जा रही हैं। ये तो बात हुई उर्दू शिक्षण संस्थानों में आज की जानकारी बढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों के बारे में।

मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म नीलकमल में। साथियों, उर्दू शिक्षा का भी अपने आप में विशेष महत्व है और सरकार के द्वारा उर्दू शिक्षण संस्थानों के लिए समय समय पर प्रभावी

मुकेश को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था शारदा। युगवाणी कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहां इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में आईपीएल

0: क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा 6:15 पर। आप सुनेंगे चर्चा कृषि में AI का प्रयोग। इसके अलावा आप सुनेंगे मन भावन क्रम में अपनी ही पसंद के लोकगीत। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। 7:05 पर हम आपको सुनवाएंगे उद्धव शतक सौपाठ की 7वीं कड़ी। फरमाइशी फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:31 पर, कार्यक्रम श्याम सुहानी के तहत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 8 बजे। देशगान एक बार पुनः आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर, एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज की फिल्म होगी राजा और रंग। सुहानी तराने आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर, जिसमें आप सुनेंगे कुछ गर्मी से संबंधित लोकगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

आप सुन रहे थे देशगान, कलाकार थी शारदा वालिंकर, गीत हरिओम दुबे का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडे, जिसमें आप सुनेंगे अपनी ही पसंद के लोकगीत मनभावन क्रम में।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया कार्यक्रम में आज सबसे पहले बात करेंगे एआई के प्रयोग की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग खेती को स्मार्ट, सटीक और अधिक लाभप्रद बनाए रहे हो, जाकी मदद से किसान भैया कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सके हैं। किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल की तस्वीर अपलोड कर मिनटन में कीट और बीमारियों की पहचान कर सके हैं। एआई तुरंत सही दवा और मात्रा की जानकारी दे देवे है, जाते फसलन को नुकसान कम हुए है। भैया मौसम के बदलते पैटर्न को भाप के एआई किसानन को बुवाई, सिंचाई और कटाई को सही समय बतावे है। एआई संचालित सेंसर मिट्टी की नमी, नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा जांचे है, जाते जी तय हुए है कि खेत को कब और कितनी खाद पानी की जरूरत है, जाते पानी की भारी बचत हुए है। भैया एआई आधारित ड्रोन फसलन पे कीटनाशक और उर्वरकन को सटीक छिड़काव करे है, जो पारंपरिक तरीकान की तुलना में काफ़ी तेज और कारगर है। किसान ई मित्र जैसे एआई चैटबॉट, किसानन की अपनी भाषा में पीएम किसान सम्मान निधि और अन्य योजनाओं से जुड़े सवालन के जवाब देवे है। भैया बात जी है कि कृषि क्षेत्र में एआई को प्रयोग किसान भैयान को काफ़ी लाभ पहुंचा रहे है। भैया आज दिना है मन भावन को, जहाँ में हम सुनवा में हैं आपकी पसंद के लोकगीत। कार्यक्रम को आरंभ करें हैं जा लोकगीत के संग, स्वर है मदन मोहन ब्रजवासी को।

मदन मोहन ब्रजवासी के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। अगला लोकगीत है डोरीलाल गोला के स्वर में, भैया सुनो।

अभी भैया आनंद ले रहे हैं जालो गीत को, स्वर दियो हो डोरीलाल गोला ने। भैया लोकगीत अभी कार्यक्रम में और सुनवाएंगे, बातें पहले बात करें हैं ऐसी भीषण गर्मी की और बातें बचे रहवे के बारे में। भैया भीषण गर्मी और लूते बचवे को हाइड्रेटेड रहो बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी और ORS पिएं। धूप में निकलवे ते बचें और यदि बाहर जाए वो बहुत ज़रूरी हो तो सूती कपड़ा पहने और सिर को ढक के रखें। ढीले कपड़ा पहने ताकि शरीर में हवा लगती रहे। तलो भुनो और मसालेदार खाएवे ते बचें। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जैसे पानी ते भरपूर फलन को डाइट में शामिल करें। नारियल पानी, छाछ, पुदीना, एलोवेरा जूस इत्यादि को सेवन करें। अगर लू लग जाए तो बाकी शरीर में लक्षण दिखाई दे में हैं, जैसे कि शरीर को तापमान अधिक है जानो, तेज सिरदर्द और चक्कर आनो, अत्यधिक थकावट और कमजोरी, जी मिचलानो और उल्टी होनो, दिल की धड़कन तेज होनो, पसीना आनो, बंद है जानो है। भैया अगर काऊ को लू लग गई है तो बाकू तुरंत ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, शरीर के कपड़ा हटा दें और ठंडी हवा दें में, शरीर पर ठंडे पानी की पट्टी रखें, अगर है सके तो ठंडा पानी धीरे धीरे पिवा में, बेहोशी या गंभीर स्थिति में तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जावें। भैया जाति बचाव के कार्य में बच्चान को धूप में खेलवे ते रोकें, बुजुर्गन को दोपहर में बाहर जाएवे ते बचावें, उनके खान पान और पानी पीवे पे विशेष ध्यान दें, घर में ठंडी और हवादार व्यवस्था सुनिश्चित करें। तो भैया जावाद के बाद एक बार फिर करामे हैं आपको मनोरंजन जा लोकगीत के संग, स्वर है सावित्री दीक्षित को।

सावित्री दीक्षित के स्वर में भैया ने सुनो जी लोकगीत, दामोदर शर्मा के स्वर में है जी अगलो लोकगीत, भैया सुनो।

भैया आनंद ले रहे हे जालो गीत को, स्वर दियो हो दामोदर शर्मा ने। अब सुनो शालिनी शर्मा के स्वर में जी अगलो लोकगीत।

अभी भैया ने आनंद लियो जा लोकगीत को, स्वर हो शालिनी शर्मा को। जाई के संग भैया आज के जा मन भावन को यहीं पे दें हैं विराम, सब भैयान को हमारी राम राम।

आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, जिसमें आज आपने सुने मनभावन क्रम में अपनी पसंद के लोकगीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

आप सुन रहे थे रविंद्र जैन और साथियों को, फिल्म का नाम था ब्रजभूमि। आइए आप सुनते हैं महेंद्र कपूर को, फिल्म का नाम है कलयुग के रामायण।

0: कलयुग की रामायण। अभी आप इस फिल्म में सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों को। संध्या बंधन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। लीजिए सुनिए उद्धव शतक सौपाठ।
1: सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नागर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

है उद्धव, जिस तरह सुख के दिनों को जाते देर नहीं लगती, उसी तरह हमारे दुख तथा संघर्ष की रातों के जाते भी देर नहीं लगेगी। प्रेम मार्ग को छोड़ ज्ञान पथ को तुम कल्याणकारी बता रहे हो, किंतु ये भी तो बताओ कि जब दीवारें ही नहीं रही तो उन पर अवलंबित छत बिना कैसे टिकेगी? यदि हमने तुम्हारे कहे अनुसार संसार को मिथ्या समझ भी लिया तो ज्ञान मार्ग भला हमारे किस काम आएगा? हम जानती हैं उद्धव कि आज हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, हमें अनेक आघात सहने पड़ रहे हैं, किंतु वो दिन भी दूर नहीं उद्धव जब श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर होगी और हमें विपत्तियों से मुक्ति भी मिल जाएगी। तब तो बस कहने के लिए केवल बातें ही शेष रह जाएंगी, अंततः कृष्ण हमें प्राप्त हो ही जाएंगे, तब विगत दिनों की दुखद स्मृति ही शेष रह जाएगी उद्धव, दुखद स्मृति ही शेष रह जाएगी, और हमें याद आएगा कि उद्धव और श्री कृष्ण ने कैसे कैसे प्रयास हमें हमारे प्रेम मार्ग से विमुख करने हेतु किए थे।

हे उद्धव, जब समय परिवर्तनशील है तो निश्चय ही योगियों भोगियों तथा दुख दर्द से विकल वियोगियों के वर्ग इस संसार में सदैव नहीं बने रहेंगे। अर्थात आज भले ही हम वियोग पीड़ा से व्यथित हैं, किंतु कभी तो कृष्ण हमें मिलेंगे, तब हमारे भी सुख के दिन आएंगे।

हे उद्धव, श्री कृष्ण ने पहले हमें बहकाकर तथा प्रेम के पाठ को पढ़ाकर हमारे शरीर तथा मन को विराग्नि में तपने वाले पात्र जैसा बना दिया है, अर्थात हमारे शरीर तथा मन श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में जलते रहते हैं तथा वियोग दुख से संतृप्त रहते हैं। उस पर आप आकर सांसों की यातना के बखेड़ों को झाड़ रहे हैं, विपत्तियों की वर्षा कर रहे हैं। उद्धव, आप जैसे उपदेश देने वालों की इस ब्रज देश में अटल भीड़ भाड़ है। जो भी यहाँ आता है सो हमें उपदेश ही देकर चला जाता है और फिर हटने का नाम ही नहीं लेता। अंत में गोपियां श्री कृष्ण पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण तो कुब्जा कुबड़ी का संयोग पाकर ही योगी हो गए। हे उद्धव, अब आप हमें ये बताइए कि आप उनके गुरु हैं अथवा चेला, अर्थात क्या आप भी उन्हीं जैसे हैं जो हमें योग का उपदेश दे रहे हैं और स्वयं भोगरथ हैं।

0: साथ ही आप सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे अंशुना सक्सेना और रामशरण वशिष्ठ। वादक कलाकार थे बांसुरी पर मोहन श्याम पचौरी, वायलिन पर शकील अहमद, तबले पर गुलाम अहमद, पखावज पर राधा रमन दास, साइट रिदिम सत्यनारायण शर्मा और ऑर्गन पर आशीष कुमार अग्रवाल। संयोजक एवं वाचक यतीन्द्र चतुर्वेदी। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, कहा बिजली उत्पादन इकाई

0: कंपनियों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की उपस्थिति में ऊर्जा विभाग, पावर कारपोरेशन एवं डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अमेरिकी विदेश मंत्री कल आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रूबियो भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ में हैं। सर संघचालक सरस्वती कुंज निराला नगर में चल रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में प्रशिक्षण लेने आए शिक्षार्थियों के मध्य बौद्धिक और संवाद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम में नेपाल सहित अवध, कानपुर, गोरक्ष और काशी प्रांत के 289 कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 9 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बरेली में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। एक रिपोर्ट।
3: लखनऊ में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चली, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुई। इस बार परीक्षा से पहले चेहरा पहचान प्रणाली लागू की गई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले इस सिस्टम से होकर गुजरना पड़ा। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से 37,000 से अधिक परीक्षार्थी पंजीकृत थे। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है।

0: समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में कोडीन सिरप की अवैध तस्करी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने कल अदालत में 40,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच में 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इससे पहले भी एसटीएफ ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की थी। एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में अदालत में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा के खिलाफ चार्जशीट कल दाखिल की गई। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और आसपास के कुछ स्थानों पर कल दिन में तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर रात्रि के तापमान में वृद्धि का भी अनुमान जताया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू के ऑरेंज अलर्ट के साथ ही विभाग ने कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आने वाले तीन दिनों में प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
1: जैसा कि पिछले दिनों में गर्मी का असर है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी अगले तीन दिन तक का गर्मी का असर बनेगा। उसके बाद जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 28 तारीख से थोड़ा सा जो तराई बेल्ट है सेंटर पार्ट में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है, लेकिन यहां से फिलहाल अगले तीन दिन तक कोई राहत नहीं है। जैसा चल रहा है उसी क्रम में जारी रहेगा।
0: हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में कल होने वाले गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आज डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से रूट डायवर्जन लागू किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए आज से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएसी फ्लड पीएसी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तीन दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज लखनऊ में संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण के अंतर्गत फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांत मुख्यालय लखनऊ एवं चतुर्थवाहिनी के अधिकारियों और बल कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और लोगों को फिट एवं स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कहा, बिजली उत्पादन इकाइयों को पूरी दक्षता से किया जाए संचालित। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। मार्को रूबियो कल आगरा में ताजमहल का करेंगे दीदार। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 9 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक तापमान में वृद्धि और लू चलने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: सेल्फी लेंगे,
4: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी,
3: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड

0: डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
0: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम सुहानी। हमारे पास बहुत से संदेश हमें मिले हैं। सबसे पहले संदेश मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, केतर हरियाणा से मधु नायक, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राजेश हुसैन, नसीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से

खाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, प्रतीक्षा लोढ़े, शैलेश और इनके परिवारजन, पवन गौड़, सुयश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा, सेक्टर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से सुनीता शिंदे, प्रशांत शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि और कृष्णा, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल और मानवी, जिला मुरादाबाद से जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन, रॉजी, पर्ल और विलिस, हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा और रामेकर परिवार, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, हुकम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तन्मय करमकर, बैरणी मध्य प्रदेश से, कोली नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपका गव्या, भारडा सच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव, आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथोनी। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और पूरा अब्बासी परिवार। एस पी एस नहावकर, निर्मला, विशाल, नारायणा, सोपान, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से। उबरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, फरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी। अमलीडीह कबरदा छत्तीसगढ़ से संतोष राजपूत, हेम प्रवाह, पूर्वी गौरव और राजपूत। दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से नेहरू चौक फेसड़ा से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, प्रसाद, सौनभ, बेबी, सिया। जालना शहर से सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता यादव। सतरंग श्रोता परिवार कुमार गली रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश, जीविका, सनिका। पुनावली पुणे से अजय, करिश्मा, अविका और विशाखा, सोन बड़े। अजय सोन बड़े, करिश्मा सोन बड़े, अविका और शायशा। कोयती बस्ती पुनावली से शिव मंदिर हकीकत पुरा मऊ से मुन्नी भाई स्वर्णकार, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग। गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश और प्रियंका। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

महेंद्र कपूर, सलमा आगा और आशा भोसले को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था निकाह। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा। कबीर रेडियो श्रोता संघ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव और मास्टर अल कबीर। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरमा शर्मा। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम, सरदना जैन, आदि जैन और अंश जैन। माल्यान सरदना मेरठ से। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत।

फारूक अली खान फैजी, फराज फरीन, फरहान फारिया और ताहिरा, राजनगर कांति निकेतन से कशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता और कोमल गुप्ता, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, कुलदीप, शिम्बू, एकम, दमन और अभिजीत, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, कोटवा, नारायणपुरा, बाबापट्टा, बाबापट्टी, बलिया से, अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबहत, किरत हुजरे और रेहान, सांगली जिला जल शहर से, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश चंदन, सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से, और ये संदेश हमें मिला है सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और अदीब हसन।

डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी बेगम, हामिदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद सहानबाज और सिद्दीकी परिवार छत्तीसगढ़ से आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था ससुराल। शाम सुहानी का ये कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। फिल्म का नाम था साजन। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को फिल्म बेताब में।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को फिल्म बेताब में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

सांबे स्वरम में आप सुन रहे थे देशगान। ये कार्यक्रम संपन्न होता है आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं राजा और रंग फिल्म में कुछ गीत। सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं राजा और रंग फिल्म के कुछ गीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने राजा और रंग फिल्म के कुछ गीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 8:45 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश

0: मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ. जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1,00,000 votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur two experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था हिना। सत्यम शिवम सुंदरम, इस फिल्म में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र को।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था महल। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए कार्यक्रम सुनते हैं सब रस, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ ब्रज लोकगीत और बुंदेलखंडी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं ब्रज लोकगीत।

0: सायदा कुरैशी के गाए इस बुंदेलखंडी लोकगीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने कुछ ब्रज लोकगीत और बुंदेलखंडी लोकगीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, 10 बजने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाली विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बम्बई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्मभूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
2: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi,

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबली पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: You are listening to Rag Zila Kafi in the sitar recital by Pandit Harishankar Bhattacharya. He was accompanied on the tabla by Prashant De Roy.
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: And with this, we end tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed